मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता। विषय है मिट्टी के पोषक एवं सूक्ष्म जैविक तत्व।
1: किसान भाइयों, आपको संभवतः ज्ञात ही होगा कि मिट्टी को अनंत जीवन की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जीवन को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए अन्न मिट्टी में ही उपजता है। दुनिया का कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो अन्न का एक दाना बना सके, यहां तक कि अन्न की गुणवत्ता भी मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिट्टी में लोहा की कमी है तो उसमें उत्पादित धान में भी लोहा की कमी होगी और इस धान को खाने वाले मनुष्य लोहा की कमी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित हुआ करेंगे। इसीलिए मिट्टी की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखना हमारा पहला और पुनीत कर्तव्य है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट करूं कि मृदा उर्वरता है क्या। वास्तव में पौधों की उचित वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए आवश्यक 15 पोषक तत्व की आपूर्ति पौधों को मिट्टी से ही होती है और मिट्टी में इन पोषक तत्वों को प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को मिट्टी की उर्वरता कहते हैं। पहले हमारी मिट्टियों में इन पोषक तत्वों की उपलब्धता का स्तर या तो उच्च था या फिर मध्यम था, किंतु मृदा के अनियंत्रित दोहन के कारण 1950 में सर्वप्रथम नत्रजन की कमी का पता चला और आज हमारी अधिकांश मृदाओं में नत्रजन, स्फुर, पोटेशियम, गंधक, बोरन और जस्ता की कमी हो गई है। यदि मृदा उर्वरता का ह्रास इसी दर से होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फसल उत्पादन के लिए हमें दसियों तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जरा सोचिए कि क्या कोई किसान 10 तरह के उर्वरक डालकर खेती कर पाएगा, और यदि कर भी ले तो फसल उत्पादन की लागत क्या होगी। इसलिए हे अन्नदाता किसान भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि मृदा उर्वरता को टिकाऊ बनाने के लिए आप अविलंब उद्यत हो, अन्यथा आपकी मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले इन कारकों को दृष्टिगत करते हुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कृषकों को चाहिए कि वे अपनी मिट्टी की पहली जुताई मोल्ड हल से अवश्य करें ताकि मिट्टी पलट जाए। दूसरी बात कि गर्मी में मिट्टी की गहरी जुताई आप अवश्य करके छोड़ें और उसको धूप लगने दें, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं, खरपतवार के बीज हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आवश्यकता अनुसार खेत का समतलीकरण अवश्य करवाएं। खेत में जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मृदा जल मान के अनुरूप उर्वरक का प्रयोग करें। मृदा अपरदान को मैंने कहा ही, इसको कम करने की आवश्यकता है। मृदा में अम्लता या क्षारीयता उत्पन्न यदि हो रही हो तो मृदा सुधारक जैसे कि पायराइट, जिप्सम, चूना, इस सब का प्रयोग करके इसके पीएच मान को उदासीन स्तर पर ले आवे। जैविक खादों का अधिकाधिक प्रयोग करें। फसल में कीट, व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए नासी जीव प्रबंधन को अपनावे। हरी या भूरी खाद का प्रयोग अधिकाधिक करें। अब भूरी खाद आप पूछेंगे भूरी खाद क्या होता है। हरी खाद तो समझते हैं कि भाई ठीक है, ढैंचा उपजाया उसको पलट दिया, लेकिन जब हम मान लीजिए धान को छिट्टा बोते हैं तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें उसमें, तो आप ये कीजिए कि ढैंचा को और धान को एक ही साथ छींट दीजिए और जब यह 40-45 दिन का आपका ढैंचा हो गया उस पर 2,4-D का स्प्रे कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जितना भी ढैंचा है यह आपके मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी धान की फसल को कोई प्रभाव नहीं होगा, तो इसको हम भूरी खाद कहते हैं। तो हरी और भूरी खाद का प्रयोग आप अधिकाधिक करें। धान फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगावें, जो कि पहले भी हमने जिक्र किया है। संरक्षित खेती पर बल दें। फसल अवशेष को जलाने के बजाय उसे सड़ावें या फिर उसे जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया यह सब बनावें। जैव उर्वरक जैसे कि अजोला, नीलहरी शैवाल, राइजोबियम कल्चर, PSV आदि का अधिकाधिक प्रयोग करें, जिससे कि मिट्टी में इस सूक्ष्म जीवाणुओं के खास करके लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़े। मृदा में लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए मिट्टी में रसायनों का कम से कम तथा कार्बनिक पदार्थ प्रदान करने वाले खादों का अधिकाधिक प्रयोग करें। उक्त उपायों से मृदा उर्वरता सुधरेगी, आपकी माली हालत सुधरेगी और हमारा देश उन्नत होगा।
0: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम में अरुण कुमार झा की वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। हिंदी समाचार बुलेटिन के लिए अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
4: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता

0: 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। चिंतन मनन में आज चिंतन गांधी जी के चरखे पर। वाचन स्वर अमित कुमार का है।

गांधी जी की इच्छा थी कि हर घर में चरखे का संगीत सुनाई दे, भारत का हर व्यक्ति चरखा चलाए, सूत काटे और अपने बनाए हुए एक छोटे वस्त्र को भी पहने। परंतु ऐसा हो ना सका। कबीर भी अपने बनाए हुए वस्त्र को ही पहनते थे। यूरोप की महारानियों ने भी इस व्यवहार को बहुत दिनों तक अपनाए रखा। सच ये है कि असली खादी का आनंद सूत काटकर पहनने वाले ही जानते हैं। विडंबना यह है कि जिस चरखे को गांधी जी ने अपनाया, उसे भारत नहीं अपना सका। क्या चरखे की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? इस पर जरा और गौर करना होगा। सिलाई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक के युग में कोई व्यक्ति चरखे की बात करे तो उसे पागल करार दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि सिलाई मशीन के आने पर भी घर में सुई रखने का चलन उठ नहीं गया है, और ना ही कंप्यूटर आ जाने से हाथ से लिखने की कला का अंत हो गया है। यदि होटलों के रहते हुए लोग घर में खाना बनाकर खा सकते हैं, तो मिलों के साथ साथ चरखे क्यों नहीं चला सकते? गांधी जी की नजर में चरखा कभी दिखावे की चीज नहीं रही। ये आर्थिक तकलीफ दूर करने का एक सरल तरीका है, शोषण से मुक्ति का रास्ता है, इंसानियत की सेवा है, उत्पादन और वितरण का विकेंद्रीकरण करने का विचार है, और सबसे ऊपर गांव को बचाने और आत्मनिर्भर बनाने का जरिया है। 1921 में मद्रास की एक सभा में गांधी जी ने कहा था, चरखा इस बात की खरी कसौटी है कि हमने अहिंसा की भावना को कहां तक आत्मसात किया है। गांधी जी को चरखा और खादी की ताकत पर भरोसा था। उन्होंने कहा था, तुम मेरे हाथ में खादी दो और मैं तुम्हारे हाथ में स्वराज दूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी खादी के बल पर टिकी रहेगी। ये अमन की हिफाजत का जबरदस्त जरिया है। गांधी जी की इच्छा थी कि चरखा और अहिंसा को हर भारतीय अपनाए। विकास तो वास्तव में भीतर से ही होता है। यदि भीतर से ही प्रतिक्रिया नहीं हो तो बाहरी साधनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज गांधी जी को याद करने का अर्थ है उस चरखे की तलाश करना जिसके प्रयोग से अहिंसा और एकता की ताकत मिलती हो। उनके इस करामती चरखे की तलाश के लिए गांधी जी की नजर वाली चश्मे को पहनना होगा, उनके चरखा दर्शन को जिंदगी में उतारना होगा। 16 मई 1926 को नवजीवन में एक प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा था, मैं चरखे को अपने लिए मोक्ष का द्वार मानता हूं। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने द कल्ट ऑफ चरखा में चरखे की आलोचना की थी तो गांधी जी ने कहा था, मैं तो भगवद गीता में भी चरखे को ही देखता हूं।

अभी आप चिंतन मनन में सुन रहे थे चिंतन चरखे पर, वाचन स्वर अमित कुमार का था। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है।

अरुण, ये मधुमाई देश हमारा, माँ भारती की इस समोसर में वंदना के बाद अब वंदना उस भय भंजन की जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले, सभी सुखों और संपत्तियों को देने वाले अगाध करुणा के सागर परम पुरुष परमात्मा की बात, उनसे प्रार्थना

हे भय भंजना, संसार के सभी भयों का भंजन करने वाले, सबका कष्ट हरने वाले, हे नाथ हमारे भी सुध लीजिए, क्योंकि आपके सिवा इस सृष्टि में कोई जीवों के दुखों को विनाश करने वाला नहीं, कोई जीवों के दुखों को समझने वाला और उसे दूर करने वाला नहीं। एक समर्थ प्रभु जिनकी कृपा से सृष्टि पल रही है, उनकी कृपा से ही सभी को सुख शांति उन्नति समृद्धि और बल प्राप्त हो सकता है।

0: हरे राम हरे कृष्ण। प्रभु के नामों को हम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता की समाप्ति और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। इस भजन के साथ ही आज के वंदना कार्यक्रम का समापन होता है। आज आपने मन्नाडे और जगजीत सिंह की आवाज़ में कुछ भजन सुने। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। क्षमा करें, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है OCD। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर ए के भगत। भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं एक बहुत ही आम बीमारी लेकिन काफ़ी परेशान करती है, जिसे हम OCD के नाम से जानते हैं। और इसकी जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK भगत को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि OCD से हम क्या समझें, ये कैसी बीमारी है?
2: ये हमारे बीच पाया जाने वाला एक सामान्य सा रोग है, जिसे काफ़ी लोग केवल असामान्य व्यवहार करके टाल देते हैं, जबकि जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा होता है उसके लिए काफ़ी तकलीफदेह होता है। यह उसके रहन सहन, दिनचर्या, दैनिक कार्यकलाप को बुरी तरह मरीज एवं उसके परिवार को प्रभावित करता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, समाज में लगभग कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं?
2: हमारे अध्ययनों के अनुसार पता चलता है कि लगभग 2-3% लोग,
1: जी,
2: चाहे वो वयस्क हों, बच्चे हों या किशोरावस्था में हो, इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं।
1: यानी कि उम्र का इससे कुछ लेना देना नहीं?
2: हाँ, सामान्यतः इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता
1: जी। तो ज़्यादा इसको स्पष्ट करने के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: ये जिसका नाम जो स्वतः स्पष्ट है OCD, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर
1: जी।
2: इस बीमारी के इस तरह से दो भाग में, पहला वो ऑब्सेशन, जिसमें कि एक ही आइडिया, जैसे विचार, थॉट या फीलिंग या चित्र, मरीज के मन में उसकी इच्छा के विरुद्ध आता है, जिसे वो रोकने की पूरी कोशिश करता है परंतु रोक नहीं पाता है।
1: अच्छा।
2: इसका दूसरा भाग है कंपल्सन, जिसमें वो उस कार्य को क्रियान्वित करता है जिस तरह के विचार उसके मन में आता रहता है।
1: आपने कहा कि वो रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता है, ये इसका हम कह लें कि एक बहुत बड़ा लक्षण है।
2: हाँ
1: जी।
2: इसमें मरीज ये जानता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है, ऐसी बात नहीं है कि उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इस कार्य करने से रोक नहीं पाता है।
1: जी जी।
2: ऑब्सेशन के जो देखते हैं समान तक बहुत तरह के होते हैं। पहला कह सकते हैं कि इसमें एक ही तरह का बात या विचार, शब्द या इमेज, चित्र मरीज के मन में आता है वो इच्छा के विरुद्ध
1: जी।
2: दूसरा होता है ऑब्सेशनल रिमिनेशन, जिसमें मरीज बार बार एक ही तरह के विचार से परेशान रहता है, जिसका कि कोई भी तात्कालिक उत्तर नहीं पाया जाता है, जैसे कि भगवान को किसने बनाया।
1: अच्छा।
2: कोई उत्तर नहीं है। हमारे जीवन का मकसद क्या है, इसका कोई उत्तर नहीं है, इस तरह के विचारों से परेशान रहता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन या डर्ट, इसमें व्यक्ति किसी मिलावट, गंदगी से परेशान रहता है, यह उसके मन में बार बार उठता है, जिसके अनुरूप वह कार्य भी करता रहता है,
1: जैसे कि कपड़ा साफ नहीं है मेरा, बार बार उसको धोना।
2: हाँ, हाँ,
1: या हाँ, रोड पर बहुत गंदगी है तो बच बच के चलना।
2: हाँ,
1: ये सब हम
2: हाँ,
1: समझ,
2: ये सब
1: सकते,
2: समझ सकते हैं
1: जी।
2: अन्य प्रकार में ऐसे है कि ऑब्सेशन ऑफ डाउट, ये किसी भी कार्य को करने के बाद उसके मन में शंका उठती है कि वो उसने उस कार्य को किया है अथवा नहीं
1: जी।
2: सामान्यतः देखते हैं हम लोग जो समाज में पाया जाता है, वो ताला को बंद है कि नहीं, दरवाजा सटाया है कि नहीं, गैस बंद किया है कि नहीं
1: जी,
2: पानी का टैप बंद किया है कि नहीं, इस तरह के विचार कॉमनली रहते हैं
1: जी।
2: अंत में हम कह सकते हैं कि भय, ऑब्सेशन ऑफ फोबिया भी बोलते हैं, इसमें मरीज जो है किसी अनावश्यक भय से ग्रसित रहता है, जैसे किसी जानवर से, मृत्यु से, या किसी खास परिस्थिति में जाने से अपने आप को
1: बचाना चाहता है जी। तो डॉक्टर साहब, हमने इसके प्रकार के बारे में तो जान लिया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दूसरा शब्द जो था कंपल्सन, ये क्या है?
2: कंपल्सन हम कह सकते हैं कि ये ऑब्सेशन जो पहला वर्ड था उसका मानसिक मन मानस पटल में उत्पन्न हुए विचार
1: जी,
2: और कंपल्सन वो हुआ जिसमें उसने शारीरिक रूप से उस चीज को क्रियान्वित किया है
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका इलाज संभव है?
2: जी हाँ, क्या इलाज तो संभव है ही। मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास इलाज हेतु आने के पहले लगभग 5 से 10 साल तक ओसीडी की मरीज अपनी समस्या को छुपाते रहते हैं। उसके बाद ही उसके परिवार वाले या स्वतः जब काफ़ी परेशान हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता बाधित होने लगती, तब वो इलाज के लिए आते हैं। इन मरीजों का उपचार जो है बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन लगभग 30 से 40% लोग पूर्णतः ठीक हो पाते हैं
1: जी,
2: और 40 से 50% लोग दवाओं के साथ साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन 20 से 30% लोग जो है अत्यधिक सुधार नहीं आ पाता है, उनको कुछ न कुछ समस्या रही जाती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी कि ओसीडी क्या है और इससे कैसे बचा जाना चाहिए, तो इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुन रहे थे वार्ता, भेंट वार्ता, विषय था ओसीडी। भेंट वार्ता करते डॉक्टर ए के भगत, भेंट करता सचिन कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। निवेदित है श्री रामचरित मानस गान, मुख्य गायन स्वर रविंद्र साठे और सुरेश वाटिकर का है, संगीत सतीश भाटिया का।
3: एपिसोड नंबर 268 268।

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जिन मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए। अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान, मुख्य गायन स्वर सुरेश वाटकर और रविंद्र साठे का था, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

0: अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज रसरंग में कलाकार होंगे भोले शंकर झा। इसके अलावा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में आज आप 7:20 पर सुनेंगे कथा सागर। इसके अंतर्गत शंकर आनंद की स्वरचित कहानी आप सुनेंगे। कहानी का शीर्षक होगा इंतजार के बाद। इसके अलावा रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं और अखबारों की सुर्खियों के साथ साथ आज का इतिहास भी टटोलेंगे हम और फिल्मी नगमों की सौगातें भी होंगी। ये गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से 7:55 के बीच आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रातः 9:06 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राजीव कुमार झा। दिन के 10 बजे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। आज आप 10:30 पर सुनेंगे नयन तारा हंसदा का लिखा हुआ नाटक सुख की नींव। प्रस्तुतकर्ता होंगी नवमी शांति हेम्ब्रम। 11 बजे नई फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 11:30 पर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे हमारे शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम होगा नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज कलाकार होंगे सचिदानंद सिंह। 1:30 पर आज आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल की 10वीं कड़ी। लेखक होंगे अशोक आंचल। प्रस्तुतकर्ता दासमती चत्तार और अशोक शरण। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। संध्या 5 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा। 5:30 पर फिल्म संगीत। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी प्रस्तुत किया जाएगा। 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे विनय कुमार शुक्ला। 7:52 पर सुरलहरी कार्यक्रम में आज आप सीमा बनर्जी को सुनेंगे। रात्रि 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम होगा। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे और रात्रि 10 बजे प्रादेशिक लोक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शीर्ष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रेवर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 8 40 AE राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रीय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25th-2000 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25th-1000 दिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कंदुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35th-1100 संस्करणं मासस्यास्य 25th-दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:00 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और मैं इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ आपका दोस्त रवित्र गौतम। श्रोता मित्रों, आज तिथि है 2 जुलाई, दिन है गुरुवार और वर्ष तो 2026 है ही। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं इसे हम टटोलते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम आपको रूबरू कराएंगे रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं से जो हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मौसम कैसा रहने वाला अगले 5 दिनों के अंदर, इसकी भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और अखबारों की सुर्खियों के साथ साथ आज के इतिहास को भी टटोलेंगे। रसरंग में आज भोले शंकर झा अपनी प्रस्तुति देंगे और कथा सागर में आप सुनेंगे शंकर आनंद की कहानी इंतजार के बाद और फिल्मी नगमों की सौगातें भी होंगी। ये सब कुछ होगा अगले 54 मिनट के अंदर, यानी 7:01 अभी हो रहा है और 7:55 तक हमारा ये कार्यक्रम का कारवां आप सुनेंगे। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का पक्ष है हमारा जीवन। अब ये शब्द सुनने में अजीब सा लगता है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है हमारा जीवन, लेकिन अगर इसे गंभीरता से लें तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ज़रा सोचिए। जी हाँ, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा ज़िंदा रहना है, क्योंकि कोई भी जीव संसार में चाहता नहीं कि उसे कोई क्षति हो और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है और इसकी महत्व को बहुत अधिक तरजीह देते हुए हम इसके प्रति अगर सावधानियां बरतें तो शायद हमारे जीवन बहुत अच्छी तरह और बहुत उत्तम तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं अनजाने में, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, जो हमारे जीवन को बहुत कष्टप्रद बना सकता है और जीवन समाप्त भी कर सकता है। अगर हम इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो पता चलेगा कि सच में ऐसा ही है। अब देखिए ना, हम अपने आसपास के लोगों में देखते हैं वो कई तरह के नशे करते हैं। नशा जो शरीर के लिए ही नहीं पूरे मानव जीवन के लिए ख़तरा है। कभी भी वह बारूद की ढेर की तरह विस्फोट हो सकता है, यानी बीमारियों का आगमन हो सकता है और शरीर बहुत कष्ट में पहुंच सकता है या समाप्त भी हो सकता है। नशा ऐसी बहुत गंदी आदत है जो शरीर के इस यंत्रावधि को बिल्कुल समाप्त जैसा कर देता है। तो नशा और अनेक प्रकार के नशे हैं, तो इन सभी प्रकार के नशे से हमें तौबा करना चाहिए, बचना चाहिए। छोटी छोटी आदतें हमारे अंदर बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम तंबाकू अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे आसपास के बच्चे हैं उन्हें तंबाकू से जिज्ञासा होती है, आखिर ये कैसी चीज़ है जो हमसे बड़े के हाथों में है, और वो बड़े प्रेम से उसे मलते हैं, रगड़ते हैं और फिर मुँह में डालते हैं, और बच्चों में जिज्ञासा होती है और इससे ही नशे की जो ये क्रियाविधि है वो दूसरों तक फैलती है। तो सार्वजनिक तौर पर अगर हम इस तरह के शिकार हैं तो सार्वजनिक तौर पर इन चीज़ों से बचें तो शायद हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, कोई भी मादक पदार्थ, वो बहुत ही हानिकारक है और हमारे

0: एक के सुधार करने से हम एक एक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में हम चढ़ जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत अधिक क्रोध का समावेश हमारे जीवन के लिए खतरा होता है। इससे भी हमें बचना चाहिए। नशा की तरह क्रोध भी जीवन को समाप्त कर सकता है। तो क्रोध कैसे समाप्त होगा, ये बहुत गूढ़ विषय है और इसके लिए अध्यात्म भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम इसे मोटे तौर पर देखें तो किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेने और अपने जीवन का अनुभव उस क्रोध को शांत करने में हमारी मदद कर सकता है। अनेक अनेक उलझनों में हम पड़े, अनेक अनेक बार क्रोध आया, लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन समाधान आज तक नहीं मिला। इसलिए आगे भी क्रोध करने से कोई समाधान हमारे उन उलझनों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। हमारे जीवन का अनुभव, हमारे आसपास के लोगों के जीवन का अनुभव क्रोध से बचने में मदद कर सकता है। क्रोध में की हुई कोई भी गलती, क्रोध में किया हुआ उत्साहपूर्वक कोई भी कार्य बहुत बुरा परिणाम देने वाला हो सकता है। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है। इस पर हम ध्यान रखें तो शायद हमारे जीवन का कायाकल्प हो सकता है, समाज परिवर्तित हो सकता है, देश परिवर्तित हो सकता है, पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया सुंदर, सुदृढ़ और बहुत आनंद देने वाली खुशियों को मनाते हुए से जीने जैसे हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने जीवन की छोटी छोटी आदतें जैसे नशा और क्रोध से बचने के बारे में। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं को हम आपसे साझा करें इसका। और ये सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के से संबंधित ये सूचनाएं हैं। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। प्रातः 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस जमालपुर से चलकर हावड़ा जाती है। 7:55 पर अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी भी रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर आती है भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। अपने सही समय से 8:15 पर यह रेलगाड़ी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, इसका सही समय है भागलपुर पहुंचने का प्रातः 8:05, लेकिन आज ये रेलगाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की इसकी सूचना है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर आती है वनांचल एक्सप्रेस। अपने सही समय से प्रातः 9 बजे भागलपुर स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर MEMU 9:15 पर अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से जमालपुर के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 10:15 पर रवाना होगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से आनंद विहार जाती है 11:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। ये सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार आइए सुनते हैं रसरंग में बोले शंकर झागो, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी।

0: के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

अभी आप रस रंग में भोले शंकर झा को सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और वक्त है अब मौसम संबंधित सूचनाओं से रूबरू होने का। ये सूचना हमें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सब ओर से प्राप्त हुई। इसके अनुसार पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि अगले 5 दिनों के अंतर यानी 6 जुलाई तक के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने, हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया।

गया है। हालांकि भागलपुर, बांका, रोहतास, कैमूर जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः बेला में 80 से 85% तक और दोपहर में 25 से 30% तक रहने की संभावना है और इस पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ऐसा अनुमान भी व्यक्त किया गया है। यानी कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना 5 दिनों के अंदर व्यक्त की गई है। अभी आप मौसम सूचनाएँ प्राप्त कर रहे थे भोले शंकर झा से। अब आइए सुनते हैं मीराबाई की ये भक्ति रचना।

0: अभी आप रसरंग में बोले शंकर झा को सुन रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और समय हुआ है 7:20:59। अब बारी है कथा सागर की। आज कथा सागर में आइए सुनते हैं शंकर आनंद की स्वरचित कहानी इंतजार के बाद।
1: मेरी कहानी का शीर्षक है इंतजार के बाद। मदन बाबू इन दिनों बहुत बीमार चल रहे हैं। जब से रिटायर हुए तब से उनका आराम खत्म हो गया। कहने को यह बात उल्टी लग सकती है, पर सच यही है कि जब से उनका काम छूटा उनका जीवन कठिन हो गया। न समय पर जगते हैं, न समय पर सो पाते हैं, खाना पीना सब अस्त व्यस्त हो गया है। करने को कोई काम नहीं लगता, पर असल में काम तो बहुत है। एक बेटी है जवान, उसकी शादी करनी है, ज़मीन खरीदा है एक कट्ठा शहर में, वहाँ घर बनाना है। आखिर कब तक किराए के मकान में रहेंगे? जब से होश संभाला तब से इस शहर से उस शहर किराए के मकान ही खोजते रहे। जिम्मेदारी थी, उसे पूरा करना था। उस समय घर बनाते कि बच्चों को पढ़ाते, आज पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया तो बेटी बैंक में नौकरी कर रही है और बेटा सचिवालय में बड़े पद पर अधिकारी है। मदन बाबू हाई स्कूल के मास्टर थे, भूगोल पढ़ाते थे, बहुत विद्वान आदमी। कहते हैं कि जब वे वर्ग में जाते तो उस घंटी बैठने की जगह नहीं मिलती थी। जितने बच्चे थे सब आकर जमा हो जाते थे। वे पढ़ाते ही इतना अच्छा थे कि 30 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगी। तब से न जाने कितने स्कूलों में उनका तबादला हुआ, पर वे कभी हार नहीं माने। जंगल में भी रहे तो उन्होंने उसे चमन बना दिया। ये खासियत है उनकी, वे बहुत भले आदमी हैं। यही कारण है कि अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहे। 30 साल की उम्र में एक दाग भी उन पर नहीं लगा। न किसी अधिकारी ने उन्हें कुछ कहा, न विभाग की तरफ से उन्हें कोई नोटिस मिला। अंतिम समय में तो वे हेडमास्टर भी बनाए गए, तब भी अपना काम उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। मीटिंग हो, प्रपत्र जमा करना हो, योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, सब काम उन्होंने जिस सादगी और सुंदरता से किया उसे आज भी लोग उदाहरण के रूप में गिनवाते हैं। जब तक नौकरी में रहे हर बार लोग उनसे पूछते कि मदन बाबू आपने ये कैसे भरा, आपने इसे कैसे पूरा किया। इस तरह के अनगिनत सवाल उनके पास आते और वे उन सब का जवाब भी देते। कभी वे ऊब गए हों या गुस्सा होकर बताने से मना कर दिया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। उनकी एक ही दिक्कत है कि वे बहुत ईमानदार हैं। जिस ईमानदारी को सहारा बनाकर उन्होंने अपना जीवन सरलता से काट लिया, अब अंतिम समय में आकर यही ईमानदारी उनके लिए मुसीबत बन गई है। वे आज तक कभी किसी गलत काम में हाथ नहीं दे पाए। उन्हें लगता था कि अगर उनमें प्रतिभा है तो उनके रास्ते को रोकने वाला कोई नहीं है। हुआ भी यही, कभी उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अगर समस्या हुई भी तो उसका हल निकालने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। एक सफल शिक्षक के रूप में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। यह गर्व की बात है उनके लिए, पर निजी जीवन में वे इसी ईमानदारी के कारण हार रहे हैं। उनकी बेटी की शादी उनके लिए तनाव का कारण बन गई है। वे चाहकर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मदन बाबू बहुत सिद्धांत वाले आदमी हैं। उन्होंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। यही कारण है कि बेटे के बाद जब बेटी हुई तो उन्होंने उसके जन्म पर खूब मिठाइयाँ बांटी थी। पूरा मोहल्ला जान गया था कि मदन बाबू बेटी के जन्म पर कितने खुश हैं। कुछ लोगों ने इसे दिखावा भी कहा, पर नहीं, यह उनके निश्चल प्रेम का उदाहरण था जो आगे चलकर सच साबित होता गया। जिस स्कूल में उन्होंने बेटे का दाखिला करवाया उसी में बेटी भी पढ़ी। खाने पहनने से लेकर सोच विचार तक में उन्होंने इस बराबरी को कभी नज़रअंदाज नहीं किया, हर चीज़ का ध्यान रखा। इसी का नतीजा था कि ग्रेजुएशन के बाद बेटी भी पटना जाकर तैयारी करना चाहती थी, तब भी उन्होंने एक बार मना नहीं किया, जबकि घर पर सिर्फ वे बच गए और उनकी पत्नी। फिर भी उन्हें लगा कि नहीं, अपने सुख और मन बहलाव के लिए बच्चे का भविष्य खराब करना उचित नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने से लेकर सोच विचार के स्तर पर पूरी आज़ादी दी। इसका परिणाम भी अच्छा आया। उनके बेटे उदय ने सचिवालय की परीक्षा में पहला स्थान पाया तो बेटी बिना भी बैंक में PO बन गई। इससे अधिक प्रसन्नता की बात उनके लिए और क्या होगी कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बेटी की शादी के लिए लड़का खोजने में उन्होंने कोई कमी नहीं की। उनके लिए गर्व का विषय है कि बेटी नौकरी कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है। कई जगह उन्होंने लड़का देखा भी, बैंक में, सिविल सेवा में या रेलवे के बड़े पदों पर। वे चाहते हैं कि वीना की शादी योग्य लड़के से हो ताकि वह खुश रहे। लड़का मिला भी, पर हर बार बात लेन देन पर।

0: अटक जाती है। वे दहेज के घोर विरोधी हैं। वे मानते हैं कि दहेज लगभग रिश्वत की तरह है। जब मेरी बेटी योग्य है, सुंदर है, प्रतिभावान है, तो फिर दहेज क्यों दूँ? ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है या 10-20 लाख दे नहीं सकते। हर चीज़ में सक्षम हैं, पर जो सिद्धांत है उस पर वे अड़ी रहे हैं। यही कारण था कि बेटे की शादी में उन्होंने 1 रुपया दहेज नहीं लिया। लड़की के पिता के सामने उन्होंने सिर्फ शादी की बात की, बाकी कोई मांग नहीं थी उनकी। पर इस बार उनके सिद्धांत ही उनके लिए मुसीबत बन गए। कई बार अच्छा लड़का मिला भी इच्छा हुई कि बात आगे बढ़ाएं। लड़के का बायोडाटा, फोटो सब उन्होंने दिया। लड़की पसंद भी हो गई। तब लड़के के पिता ने अपना मांग पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 30 लाख नकद, 15 भर सोना, 1 शेवरलेट गाड़ी और न जाने क्या क्या। वे चुपचाप सुनते रहे और लड़के के पिता की लिस्ट बढ़ती रही। जब तक नौकरी में रहे तब तक भागदौड़ चलता रहा। अब जब रिटायर हो गए तो एक चिंता सताने लगी उन्हें कि बेटी जवान है, कुमारी है, जल्द से जल्द अब शादी कर दिया जाए वही अच्छा। उम्र का क्या ठिकाना है, अपनी आँखों के सामने सब हो जाए वही अच्छा। आखिर तक अब तक रहना है, अब कौन जानता है कब बुलावा आ जाए क्या पता। इसी चिंता में रहने के कारण अब मदन बाबू अक्सर बीमार रहने लगे हैं। कोई रास्ता नहीं निकल रहा। उदय ने उन्हें कई बार समझाया, सब आपकी तरह नहीं सोचते, बात दहेज के कारण रुक रही है तो इस पर विचार किया जा सकता है। आखिर दहेज न देने की जिद में बिना कुमारी तो नहीं रहेगी जीवन भर। लेकिन बेटी का स्वभाव भी वे जानते हैं कि वह भी दहेज का विरोध करती है। अगर जान गई कि दहेज देकर शादी हो रही है तो वह मंडप से उठ जाएगी। कल जब छुट्टी में बिना घर आई तो सब कुछ पहले जैसा ही था, बस माहौल बदल गया था। माँ अलग उदास थी कि अपनी जिद के कारण सब बेटी को मुश्किल में डाल रहे हैं। हर चीज़ की एक उम्र होती है, उसी उम्र में वह अच्छा होता है। बिना 30 की उम्र की हो गई है, अब क्या उसका बुढ़ापे में ब्याह होगा। वह माँ थी तो भावुक होकर कभी रोने भी लगती थी। पिताजी अलग गुमसुम थे, बिना कई बार पूछ चुकी थी कि कोई तकलीफ है तो बताइए, पर नहीं, तकलीफ देह की होती तो मदन बाबू कह भी देते, मन की तकलीफ किससे कहते। बेटी से बेटी की शादी की बात करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वीना को कुछ आभास हो गया। वह पूछने लगी तो मदन बाबू साफ साफ बताने लगे। उन्होंने बताया कि लड़का अच्छा है, IAS है, 40 लाख में बात हुई है, मैंने हाँ भर दिया है, जल्दी ही सब फाइनल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के कारण थोड़ा परेशान हूँ, सारा काम करना है, उसके लिए उदय भी छुट्टी लेकर आ रहा है। वीना उनकी बातों को सुनती रही। उसे लगा कि यह पिताजी की भाषा नहीं लग रही, कोई और ही है जो बोल रहा है। तब उसने पिता की आंखों में देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वे हार गए हों। वह हार उनकी आंखों में दिख रही थी। वीना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि मैं दहेज देकर शादी नहीं करूँगी, मुझमें क्या कमी है जो आप सब इतने परेशान हैं। बहुत देर तक वीना बोलती रही और मदन बाबू सुनते रहे। उन्हें आज लग गया कि उनकी दी हुई शिक्षा बेकार नहीं गई। थोड़ी देर पहले तक उनकी आंखों में जो हार की छाया दिख रही थी वह न जाने कहाँ खो गई। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। अब मदन बाबू भी जान गए कि वीना कभी समझौता नहीं करेगी, आखिर बेटी किसकी है। आज का दिन मदन बाबू के लिए सबसे बड़ा दिन है। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है। आज वीना की शादी है। उसकी तरह लड़का भी बैंक में PO है, देखने में सुंदर है, सुशील है। उसने खुद वीना से शादी का प्रस्ताव रखा। बात मदन बाबू तक पहुँची तो उन्होंने सब कुछ देख परख लिया, फिर बात पक्की हुई। न दहेज, न सोना चांदी की मांग, जैसी वीना है ठीक वैसा ही उसका होने वाला पति विमल। शहनाई के बीच वह बारात लेकर आ रहा है।
1: अभी आपने कथा सागर में सुनी कहानी इंतजार के बाद, रचनाकार और वाचक शंकर आनंद। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और अब नगमों की सौगातों की बारी। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुना साधना सरगम और एहर हिरण की आवाज़ों में छुपा रुस्तम फिल्म का ये नगमा। गीत आनंद बख्श ने लिखा था, संगीत बद गया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और अब वक्त है आज के अखबारों की सुर्खियों को टटोलने का। आज के अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी है, अब स्टेट हाईवे और पुलों पर लगेगा टोल, प्रति किलोमीटर 1.25 रुपए टैक्स देने होंगे। 16वें वित्त आयोग से राज्य के गांवों को मिलेंगे 51,923 करोड़। बक्सर के बावन मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, जी राम जी योजना लागू, बस स्टैंड का कायाकल्प होगा, नगर निगम को फंड मिलेगा, शिक्षकों की बहाली होगी, खनन से बढ़ेगी कमाई और आस्था और शिक्षा, जैसे शीर्षकों से अखबारों ने इसे विशेष रूप से विस्तृत रूप से छापा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 46,000 करोड़, राज्य के विकास के लिए ये निवेश मंजूर हुए हैं। इसके तहत औद्योगिक विकास के लिए बियाडा 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगा, सड़कों के लिए पथ विकास निगम 15 करोड़ रुपए और पुलों के लिए पुल निर्माण निगम 6,000 करोड़ रुपए का लोन ले सकेंगे। इन सभी ऋणों की गारंटी बिहार सरकार लेगी। इसके अलावा राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की तस्वीर बदलने के लिए 51,923 करोड़ रुपए के फंड को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। 16वें वित्त आयोग के तहत यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी सुविधाओं का विकास होगा। ये आज के अखबारों की सुर्खी है। इसके अलावा अखबार ने छापा है, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतें घटने के बाद एक निजी एनर्जी कंपनी ने देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। देश के सबसे बड़ी निजी फ्यूल रिटेलर ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये और डीजल के दाम 3 रुपये कम कर दिए हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी 183.50 रुपये की कटौती की है। ये आज की अखबार की सुर्खी है। इसके अलावा 18 मिनट के डीएलएड धारक 3,000 शिक्षकों की नौकरी अब जाएगी, आज के अखबार ने लिखा है। TRE 3 के नियमों के तहत डिग्री अमान्य, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3,000 शिक्षकों की नौकरी समाप्त होगी। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 महीने का DL.ED कोर्स किया। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम वीरकर ने कहा, सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऐसे शिक्षकों को सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इस मौसम से जुड़ी हुई खबर अखबारों ने छापा है। अखबार लिखता है, सामान्य से कम बारिश होगी इस बार, इस माह भी राहत नहीं मिलेगी गर्मी से, गर्मी और उमस लगातार सताएगी। बिहार में जून के बाद अब जुलाई में भी मानसून राहत देने वाला नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके विपरीत अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। ऐसे में खेती, पेयजल, जनजीवन पर मौसम की दोहरी मार पड़ सकती है। और जुलाई में बिहार में मानसून का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, जिसमें सामान्य बारिश 340.5 मिलीमीटर होती है और इसी दौरान धान की मुख्य रोपनी भी होती है। इस बार बारिश कम होने के साथ साथ गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। विभाग के मुताबिक जुलाई में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक। हालांकि भागलपुर में 5 जुलाई तक हल्की तेज बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। इसके अलावा एक अखबार ने खबर छापी है, सदर अस्पताल में ICU शुरू, अब मायागंज नहीं होंगे रेफर, पहली बार मिली है सुविधा। सदर अस्पताल में पहली बार ICU सेवा शुरू हो गई है। अब तक यहां गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर करना पड़ता था। मायागंज में ICU बेड सीमित होने के कारण कई बार मरीजों को इंतजार करना पड़ता था। अब सदर अस्पताल के मरीजों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या क्या विशेष छपा है अखबारों में,
पहले प्रतिनियुक्ति अब कक्षाएं नहीं गेस्ट फैकल्टी का फंसेगा। तय मानदेय मूल संस्थान छूटा और नई जगह काम नहीं मिला, प्राचार्यों ने भी की पुष्टि। प्रखंडों में डिग्री कॉलेज के प्रोजेक्ट ने गेस्ट फैकल्टी को उलझा दिया है। राज्य के 211 प्रखंडों में नई राजकीय डिग्री कॉलेज खुले, इनमें पुराने कॉलेज और पीजी विभाग के नियमित शिक्षकों के साथ गेस्ट फैकल्टी को भी प्रतिनियुक्त किया गया। नए कॉलेज में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होनी थी जो नहीं हुई। प्रतिनियुक्ति से लेकर अब तक संबंधित गेस्ट फैकल्टी को एक भी कक्षा नहीं मिली है। उन्हें मानदेय का भुगतान प्रति कक्षा की दर से किया जाना है। इसके अलावा आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो मौसम के बारे में अखबार ने लिखा है कि 4 जुलाई से 5 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश की संभावना संभव हो सकती है। पूरे देश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन मौसम विज्ञान के अलग अलग संभावनाओं से बारिश होने की संभावना कम ही नज़र आती है। इसके अलावा बारिश से जुड़ी हुई खबर छपी है कि वर्षा नहीं होने के कारण धान के उत्पादन में बड़ी गिरावट हो सकती है। और अब खेल की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। आज के अखबारों ने खेल की खबरों में क्या सुर्खी लगाई है। नॉकआउट के टॉप गोल स्कोरर बने एम्बापे। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फिर दूसरी बार शुरुआती 4 मैच जीतने में सफल फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबर है। इसके अलावा टेनिस से जुड़ी खबर है, सबालंका की इस साल 35वीं जीत। वर्ल्ड नंबर 1 सबालंका ने मार्कटनी कैसलर का लगातार सेट मार्कटनी कैसलर को लगातार सेट में मात दी है। सेरेना की 4 साल बाद वापसी हो रही है, 3 सेट में हारी सिनर की लगातार 9वीं जीत है। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल खेले जा रहे T20 मैच को वर्षा के कारण रद्द करना पड़ा, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 187 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आइए सुनते हैं एक और नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे दाग द फायर फिल्म में जसवंतर नरूला, अनुराधा बोडवाला और साथियों को। गीत समीर ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?
1: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में अब आज के इतिहास को टटोलने की बारी। आज के इतिहास में हम देखते हैं तो 1757 में 2 जुलाई को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत माना जाता है। 1940 में 2 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा 1937 में 2 जुलाई को प्रसिद्ध अमेरिकी पायलट अमेलिया ईयरहार्ट और उनके सहयोगी फ्रेड नूनन अपने विश्व उड़ान के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2002 में अमेरिकी व्यवसायी स्टीव फॉसेट अकेले गुब्बारे में दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और आज 2 जुलाई है, आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व UFO दिवस माना जाता है। यह दिन एलियंस, अंतरिक्ष जीवों और उड़ने वाली रहस्यमयी तस्तरियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा खेल पत्रकारों के काम को सम्मान देने के लिए यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार कालिंदी चरण पाणिग्रही की आज जयंती है। और आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल चंद्रलाल माधवलाल त्रिवेदी की भी आज जयंती है। 2 जुलाई 1893 को उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद अजीज, भारत के मशहूर हिंदी फिल्म पार्श्व गायक, उनका जन्म हुआ था आज की ही तिथि को 2 जुलाई 1954 में। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आज के इतिहास को अब समेटते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा। यह है फिल्म दीवाना मुस्सा नहीं से। गीत लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने, आवाज़ें उदित नारायण और साथियों की।

इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम का कारवां अपने समापन तक आ पहुंचा। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारी मेल आईडी है phaiarbhagalpur@gmail.com और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन है 8120001। तो अब आज के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।
6: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं, अब आइए शामिल होते हैं समाचारों के लिए आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए

0: जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views.

0: 265,000 रुपए रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैनुल अक्वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैनुल अक्वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख्फीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली के तहत कार, जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह दर ₹2 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण वाहनों और अन्य वाहनों के लिए टोल की दर ₹6 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है।
1: बिहार रोड यूजर फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई, यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी। पहले से इसमें प्रावधान नहीं था, जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: कैबिनेट ने पटना नगर निगम की ओर से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद पटना नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला निकाय बन जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त राशि से शहर की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि मलाही पकड़ी स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत हो जाएगी। इसके लिए 6 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण में अभी तक मेट्रो का परिचालन बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड 0 माइल से होकर भूतनाथ तक ही किया जा रहा था। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के तत्वावधान में बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इधर इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी नागरिकों से अपने अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के चिकित्सक, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर बिना पंजीयन के प्रैक्टिस कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक केवल निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन पोर्टल पर अपलोड कर राज्य में विधि सम्मत रूप से कार्य कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नगर परिषद दानापुर निजामत के पार्षद पदों के आरक्षण के संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। आयोग ने आधिकारिक सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के DL.ED कोर्स की योग्यता पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 18 महीने की DEL.ED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
7: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जुलाई महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान राजद से वैशाली के पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक वार्षिक सौराठ सभा का आज विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सौराठ सभा के दौरान मैथिल समाज के विवाह के लिए योग्य वर वधु की तलाश पूरी करते हैं, साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अरवल जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर तथा सब जूनियर राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट सहित सिगरेट बनाने वाले सामान और 9.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि

पहली पाली का मैच पूरा खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। गौरतलब है कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी टीम 11 में शामिल नहीं थे। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 2014 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ग्रामीण मजदूरों को 7 घंटे काम की 300 रूपये मजदूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, भावुक पल, नए आर्मी चीफ सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, फिर पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रभात खबर ने राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, चढ़ावा चोरी के आरोपी के कमरे में मिला रामराज कोष का संदूक, अब तक 80 लाख रूपये हो चुके हैं बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। और इस गीत के बाद

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में परदेशी बाबू फिल्म का ये नगमा।

0: अभी आपने सुना परदेशी बाबू फिल्म कनक महाभाजन थी। उदित नारायण, कवित्रा कृष्णमूर्ति और साथियों की, गीत लिखा था सुधाकर शर्मा ने, संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: अब आइए सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये नगमा।

अभी आपने सुना फूल और कांटे फिल्म का ये नगमा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें थीं। अब आइए सुनते हैं जीत फिल्म का ये नगमा।

अभी आपने जीत फिल्म का नगमा सुना। समीर ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने, आवाज़ थी कुमार सानू और साधना सरगम की। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने।

0: अभी आपने अलीशा चनाय और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये नगमा सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। इस गाने के साथ ही आज का नगमे नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं राजीव कुमार झा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में राजीव कुमार झा को सुन रहे हैं। सूरदास के इस भक्ति रचना को सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं मीराबाई की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में राजीव कुमार झा को सुन रहे थे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना आज का अर्जुन फिल्म का नगमा। गीत अनजान ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था बप्पी लाहिड़ी ने, आवाजें थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म आपकी कसम से।

अभी आपने सुना क्रोधी फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही संगीतबद्ध किया हुआ एक और नगमा आइए सुनते हैं। गाना एक बार फिर से आनंद बख्शी ने ही लिखा है, आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं शराफत फिल्म का ये नगमा। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्श ने, संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम के आखिर में अपने शराफत फिल्म का नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ थी। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: अरे अभी तक आपने चाय नहीं पी।
1: हाँ, पीता हूँ बाबा।
0: उनके यहाँ तो गए होंगे ना आप? क्या कहा राजेश जी ने?
1: हाँ,
0: क्या आखिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा?
1: क्या कहूँ तुम्हें, कुछ कहने लायक हो तब ना।
0: आखिर हुआ क्या, कुछ तो कहा होगा राजेश जी ने।
1: बहुत मांग है उनकी, बहुत मांग है।
0: लड़के वाले का काम ही है मांगना। सोचो तो, लड़के और घोड़े में अंतर ही क्या है? घोड़े जुटकर ही दूसरे के काम आते हैं, लड़का भी तो बेचारा सारी जिंदगी को जोतकर ही परिवार की गाड़ी खींचता है।
1: शायद तुम ठीक कर रही हो सुमी।
0: फिर?
1: अरे फिर क्या, रकम की

0: मांग इतनी है कि हम लोग सपने में भी नहीं सो सकते।
1: आखिर कितना चाहा है उन्होंने?
0: 50,000 रुपये।
1: हाँ, पूरे 50,000?
0: हाँ हाँ, पूरे 50,000।
1: इतनी बड़ी रकम? इतनी रकम तो हम लोग घर, दरवाजा, खेत, खलिहान सब कुछ बेच देंगे, फिर भी इतनी रकम का जुगाड़ करना असंभव है। फिर क्या होगा मेरी अकेला का? अरे तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मेरी लड़की लाखों में एक है, रूपवती है, गुणवती है।
0: अरे कहा था भाई, सब कुछ कहा था, लेकिन जानती हो उन्होंने क्या कहा? गोविंद बाबू अपनी संतान हमेशा ही अपने नजर में रूपवती गुणवती होती है, लेकिन रूप गुण के साथ शादी नहीं होती। समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, औहदा है, और फिर रूप गुण तो मेरे लड़के के पल्ले जाएगा ना। मेरे लिए क्या सोचा है आपने?
2: पापा, मम्मी, मम्मी मैं बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ।
1: शाबाश बेटे,
2: मैंने कहा था ना पापा कि मैं फर्स्ट आकर रहूंगी।
0: हाँ बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जा, जा।
1: हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? लड़की ने इतना कुछ किया, क्या यह कम है? लड़कों को तो ना कोई काम होता है ना धाम, लड़कियां और उस पर भी मेरी असला जैसी लड़की घर के कामों में मेरी सहायता भी करती है और पढ़ती भी है। ऐसी बेटी ईश्वर सबको दे।
2: अच्छा मम्मी, मैं चली।
1: असला बेटी,
2: हाँ
1: दो कप चाय बना कर लेती है ना बेटी?
2: जी मम्मी, अभी लाई।
0: तुम ठीक करती हो सुमें, ऐसी बेटी सबको दे, किंतु
1: किंतु क्या?
0: यही कि ऐसी बेटी बेटी ही रह जाती है ना, बहू नहीं बन पाती। बेटी हमारी है, बहू उनकी होगी ना, तुम समझती क्यों नहीं सुमें?
1: समझती हूँ, खूब समझती हूँ। लड़के वाले हैं, कुछ तो नाज नखरे करेंगे ही। याद नहीं आपको अपने वक्त का? उस जमाने में भी कैसे कैसे नखरे दिखाए थे आपके परिवार वालों ने।
0: क्यों पुरानी बात लेकर बैठ गई हो? गड़े मुर्दे को खाने से फायदा क्या है? आपके विषय में सोचो।
1: सोचना क्या है, आप फिर उनके यहाँ जाइए, दो चार बार तो दौड़ धूप करनी ही पड़ेगी ना। लड़के वाले अगर तुरंत राजी हो जाए तो लड़की वाले ही उस पर शंका करने लगेंगे। यही कि लड़के में कोई ऐब होगा तभी तो इतनी आसानी से तैयार हो गए।
0: तुम्हारी बातों का जवाब नहीं लगा।
1: जरा सोचिए तो, अपना सिद्धार्थ जब शादी के योग्य होगा तब आप लाख की बात करेंगे या नहीं?
0: यदि कोई मेरी मुसीबत समझता तो तय रूप में तिलक दहेज के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं पापा।
0: लेकिन हम लोग इतना जो खर्च कर रहे हैं किस दिन के लिए?
1: बेशक अच्छे दिनों के लिए, इसलिए नहीं कि घोड़े के मोल में बेचा जाऊं। पापा, मैं अपने कॉलेज की टीम के साथ मैच खेलने जा रहा हूं।
0: अच्छा अच्छा,
1: आने में देर भी हो सकती है पापा।
0: अच्छी से जाओ।
1: सुनो, मैं चाहती हूँ कल फिर जाकर रजनीश जी से बातें कीजिए।
3: अरे अरे अरे, आइए आइए गोविंद बाबू, बैठिए बैठिए, इधर बैठिए।
0: ठीक है रजनीश बाबू, बैठता हूँ। वो,
3: हाँ कहिए कहिए।
0: वो आपसे पूछना चाह रहा था कि अपने अपने अपने निर्णय में हेर फेर क्या या नहीं?
3: किस निर्णय में?
0: मेरी लड़की अजला के बारे
3: में। अच्छा अच्छा, उसे तुम्हें भूल ही गया था।
0: कुछ ख्याल तो क्या होगा आपने?
3: देखिए गोविंद बाबू, बात दरअसल यह है कि वे रांची के एक बड़े बिजनेसमैन निकेतन बाबू है ना। अच्छा। उन्होंने ही मेरे लड़की को पसंद किया।
0: कितनी पर?
3: वही 60,000 पर।
0: 60,000? 60,000?
3: अरे अरे, चाय तो लीजिए गोविंद बाबू।

0: ठीक है ठीक है रजनीश बाबू, फिर कभी, अभी चलता हूँ।
1: अच्छा नमस्कार।
0: अरे भाई कहाँ हो? अरे सुनती हो, जरा जल्दी सुनो।
2: क्या है, क्यों सर पर घर उठा रखा है आपने?
0: मैं तो घर सर पर उठा ही रहा हूँ, लेकिन तुम तो सारा गांव ही उठा लेती हो।
2: लेकिन मैं पूछती हूँ हुआ क्या जो इतने जोर से चिल्ला रहे हो?
0: हाँ हाँ, अरे भाई सुनाता हूँ। वो गांव है ना? अरे भाई वो अच्छा सा, क्या नाम है, तुम भी तो कुछ बोलो।
2: अरे मैं क्या बोलूँ, भारतवर्ष में तो गांव ही गांव है।
0: हाँ हाँ याद आया, सुल्तानपुर।
2: अच्छा,
0: ये लोग वही के रहने वाले हैं। अरे भाई नंद किशोर बाबू, उसको कौन नहीं जानता, उन्होंने रिश्ता भेजा है अपनी अचला के लिए।
2: तुम फिर पूछते क्या हो, हाँ कर दो ना।
0: क्यों नहीं, वही सोचता हूँ कल शाम में उन्हें चाय पर बुला लूँ।
2: हाँ हाँ, तुम तो कल पर जीने वाले आदमी हो, आज क्यों नहीं करते? शुभ से शीघ्र।
0: मालिक मालिक, क्या बात है रामू?
1: कोई नंद किशोर बाबू आपसे ले आए हैं।
0: अरे अरे, उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आ। जा जा
1: जी। अच्छा आइए आइए सरकार।
3: प्रणाम गुरु बाबू।
0: आइए आइए नंद किशोर बाबू, यहाँ बैठिए। बड़ी खुशी हुई मुझे आपके यहाँ आने से, मैं तो आपके यहाँ जाने ही वाला था।
3: वो मैं एक जरूरी काम से शहर आया था, तो सोचा आपसे भेंट करता चलूं।
0: आपके घर रिश्ता छोड़कर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। सचमुच इस धरती पर यदि हैवानियों की कमी नहीं, तो आप जैसे इंसानों की भी कमी नहीं।
3: अरे अरे, आप तो जरूरत से ज्यादा मेरी प्रशंसा करने लग गए गोविंद बाबू।
0: आप जैसे व्यक्ति ही तो प्रशंसा के पात्र हैं।
3: नहीं,
0: वो आपके सुपुत्र क्या कहते हैं?
3: अभी वो MBBS के चौथे वर्ष में पढ़ रहा है और हॉस्टल में ही रहता है। छुट्टियों में जब भी घर आता है तो उसकी तबीयत घर में नहीं लगती। वो मुझसे कहता है कि बाबूजी घर बड़ा सूना सूना लगता है।
0: अरे ठीक ही तो कहता है, अचला आपके घर बहू बनकर जाएगी तो आपकी भी सेवा हो जाएगी और आपके बेटे का भी दिल लग जाएगा।
3: नहीं नहीं गोविंद बाबू, आपने मेरा मतलब नहीं समझा। दरअसल मेरा बेटा तो अभी पढ़ ही रहा है, उसके शादी की बात तो अभी चल ही नहीं सकती।
0: जी आपका मतलब?
3: हाँ गोविंद बाबू, अब मेरा भी मन घर में नहीं लगता है, मेरे घर की देखभाल भी नहीं हो पा रही है। वैसे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन और इसलिए
0: ये आप क्या कह रहे हैं? माफ कीजिए नंद किशोर जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं करेगी, फिर दूसरे दिन इस विषय पर बात करूँगा।
3: खैर कोई बात नहीं गोविंद बाबू, मैं फिर आ जाऊंगा, आप ठीक से सोच विचार कर लो। अच्छा गोविंद बाबू, तो मैं अब चलता हूँ। नमस्ते
0: नमस्ते
4: नमस्ते।
2: मैंने सब कुछ सुन लिया,
5: मैंने
2: तुम्हारा तो सिर फिर गया। अरे अपनी फूल से को बिदुर के साथ बांध कर तुम भार मुक्त हो सकोगे?
5: हो सको?
2: नहीं होगी यह शादी।
5: क्या शादी?
2: क्या इसीलिए के लिए मैंने अपनी बिटिया को पाल पोस कर रखा था?
0: मैंने हाँ कर कहा, मैंने सोचा था लड़के के लिए भी खबर भेजवा के लिए।
2: तो आपकी समझने में कोई कसर है क्या?
5: कोई कसर?
2: जाने कैसे कैसे लोग समाज में अपनी हवस मिटती भी नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं फिर भी पत्नी की जरूरत महसूस करते हैं। तभी तो मैंने कहा कि लड़के वाले झुकने के कुछ विशेष कारण होते हैं।
5: अवश्य
0: लेकिन सुन
4: किशोर जी
0: बूढ़े तो
4: नहीं,
0: यही करीब
4: 45
0: के होंगे,
4: 50 के
5: मुझे नहीं पूछवाना किसी से।
4: तुम समझ
0: लक्ष्मी के अभाव ने मेरी अश्मा को
2: क्या मतलब?
0: मतलब वही है,
4: मतलब
0: समझती
2: चुप भी रहो जी, यह बात जुबान पर नहीं ना,
5: जुबान पर नहीं ना।
2: जब से लड़की ने सुना है,
5: लड़की
2: रो रो कर जान दे रही है,
5: पर जान
0: बहती रहो
4: तो
0: वही कि तुम्हारे मन में आए।
5: हाँ,
2: हाथ
5: मैं अपने गला से अचला
2: लेकर दूंगी,
5: बुढ़े
2: दिनों से बुढ़ पर
5: सिर के सिर
2: में दूंगी,
5: नहीं बन दूंगी।
4: कौन?
0: अरे आई आई,
4: अरे आई आई मिस्टर सोगी,
2: किसका
5: गला घोटा जा रहा है भाई?
4: पूछ लीजिए,
0: मैंने
4: बाहर सारी बातें सुन ली है। आप ही कहिए रस्तोगी, एक मध्यम परिवार का आदमी कर भी क्या सकता है? क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि अचला अच्छे घर में? लेकिन इसमें परिस्थिति उपाय क्या है?
5: है उपाय, हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, पढ़ लिख कर कोई काम करेगी। सुन,
2: वह
5: कुमारी रही है और अबू का गला क्या घुटा जाएगा?
4: अगर एतराज तो लगने के लिए, बहू बनाने के लिए हम लोग तैयार।
5: हाँ,
0: घर जाएगी,
4: मेरे घर जाएगी।
0: हाँ गोविंद बाबू,
4: और हाँ गोविंद बाबू,
0: रुपए
4: अभी पैसे नहीं
0: हो,
4: लड़की से होगी।
0: क्या
4: ये क्या कर रहे हैं साहब? सुन रही हो?
5: सुनिए,
4: हाँ भाई वही कह रहा हूँ, जो सब के पास रह कर भी आप लोगों का ध्यान कुएं की ओर गया ही नहीं कभी।
5: ठीक कहा आपने मिस्टर रस्तोगी। देखिए सुमी जी, अब मेरा लड़का अभी लड़का हुआ और मेरी लड़की आपकी लड़की हुई। बिल्कुल।

अभी आपने सुना शकुंतला सिन्हा का लिखा नाटक बदलता समाज। अब आइए सुनते हैं मौसम सुहाना है, ये लघु नाटिका, लेखक हैं सत्यनारायण प्रकाश।

0: अजी सुनते हो?
1: क्या है?
0: हाय, आज मौसम कितना सुहाना है।
1: तो
0: तुम तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हो
1: किस पर?
0: मेरे ऊपर और किस पर।
1: आज क्या हो गया है तुम्हें?
0: क्यों, मुझे क्या होगा?
1: कैसी कैसी बातें कर रही हो? मौसम कितना सुहाना है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, ये सब क्या है?
0: आप समझी। सुनो जी, मैं तो ये कह रही थी कि मौसम कितना सुहाना है, इस मौसम में पार्क में घूमने में कितना मजा आएगा। अब तो बस वही घर वही बच्चे, ओफो मैं तो तंग आ गई हूँ।
1: अरे रे रे, इतनी सी बात से रूठ गई? अरे यही चाहती हो ना, आज पार्क में बैठकर पिकनिक मनाई जाए।
0: मेरे चाहने से क्या होगा भला, तुम्हें फुर्सत होगी तब तो। सारे ऑफिस का भार तो तुम्हारे सर पर है। एक वो है तुम्हारा बॉस, पता नहीं उसके घर में बीबी बच्चे हैं कि नहीं, मुझे तो उसके माथे का हेलीपैड देखकर ही जी जल जाता है।
1: अरे उस बेचारे को क्यों कोस रही हो रानी जी? चलो आज तुम्हारे मन मुताबिक पार्क में बैठकर पिकनिक ही मनाई जाए।
0: लेकिन तुम्हारा ऑफिस?

0: की चिंता छोड़ो, आज छुट्टी का एप्लीकेशन भेजवा देता हूँ।
1: सच?
0: 100% सच।
1: लेकिन घर को मंगरू के भरोसे छोड़ना क्या ठीक होगा?
0: अरे हम लोग कोई 3-4 दिनों के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, 3-4 घंटे की तो बात है। मोनू स्कूल गया है और मुन्ना तो सो रहा है। मोनू के स्कूल से लौटने तक हम लोग भी लौट आएंगे।
1: हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें तो होनी चाहिए ना, फिर इतने कम समय में।
0: इसकी चिंता मत करो देवी जी, बाजार से हम लोग कुछ फास्ट फूड खरीद लेंगे बस।
1: लेकिन मुन्ने को दवाई भी तो देनी है।
0: अरे भाई वो मंगरू दे देगा, मैं उसे बुलाकर समझा देता हूँ। अरे रानी जी अब तो रोनी सूरत पर जरा मुस्कान तो लाओ।
1: नटखट कहीं के।
0: हाँ ये हुई ना बात। अब जाओ तैयार होकर जल्दी से आ जाओ और मैं मंगरू को बुलाकर सारी बातें समझा देता हूँ।
1: अच्छा जाती हूँ।
0: मंगरू, अरे ओ मंगरू।
2: आया मालिक।
3: क्या बात है मालिक?
0: बाहर क्या कर रहा था? अरे
3: जाकर के कि मिलान कर रहा था मालिक।
0: मिलान कर रहा था? क्या मिलान कर रहा था?
3: जाकर के अपनी सूरत मालिक।
0: अरे किससे मिलान कर रहा था अपनी सूरत?
3: जाकर के बैल से मालिक।
0: अरे तो तू अपनी सूरत बैल से मिलान करने लगा रे?
3: जाकर के कि आप ही तो हरदम कहा करते थे ना कि मैं बिल्कुल बैल हूँ, इसलिए आज मैंने बाहर सड़क पर एक बैल देखा तो खड़ा होकर मिलान करने लगा।
0: ओह तो ये बात है, तो क्या मैं झूठ कहा करता था रे मंगरू?
3: जाकर के बिल्कुल नहीं मालिक, आप और झूठ यह कैसे हो सकता है। लेकिन मालिक जाकर के बैल के माथे पर तो दो दो सिंह था, वो हमको नहीं है मालिक, इसका हमें बेहद अफसोस है।
0: अरे मंगरू तू चिंता मत कर, खूब मन लगा कर काम क्या कर, तुम्हारे माथे पर भी सिंह हो जाएगा।
3: क्या सच मालिक?
0: हाँ रे एकदम सच। अच्छा सुन मंगरू।
3: हाँ मालिक।
0: तुम्हारी मालकिन और मैं बाजार जा रहे हैं,
3: हैं?
0: 3-4 घंटे में लौटेंगे।
3: हाँ ठीक।
0: क्या कहते हैं, मुन्ना तो सो रहा है, जागने पर उसे दवा पिला देना।
3: एकदम पिला दे।
0: समझ गया ना?
3: जी मालिक।
0: और मोनू स्कूल से आए ना तो उसे भी नाश्ता दे देना, समझ गया?
3: जाकर के एकदम समझ गया मालिक।
0: तो हम लोग जाएं?
3: हाँ मालिक जाइए, शौक से जाइए।

0: हाँ, कितना अच्छा लग रहा है चारों ओर। आज लगता है कई वर्षों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। उधर देखो, अरे देखो ना,
1: देख रहा हूँ।
0: पेड़ पर कबूतर का जोड़ा बिल्कुल हमारी तरह बैठा है, और वो उधर देखो, आकाश में उड़ते पक्षियों का झुंड।
1: हाँ, ये सब तो अच्छा लग रहा है देवी जी, लेकिन यही सब देखती रहोगी कि घर भी जाओगी? पता है पूरे 3.5 घंटे बीत चुके।
0: जी करता है समय बिल्कुल ठहर जाए और हम दोनों यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे।
1: लेकिन देवी जी, हम लोग यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे तो घर की हालत क्या होगी मालूम है? मुन्ना जग गया होगा तो रो रो कर आसमान सर पर उठा रहा होगा।
0: बस तुम्हें तो हमेशा वही घर, वही बच्चे, और कुछ सूझता है?
1: सूझता है देवी जी, सूझता है। ये सामने रखा फास्ट फूड सूझता है, जल्दी से इसे खत्म करो और घर का रास्ता नापो।
0: चलो घर चलते हैं।
1: लेकिन ये फास्ट फूड
0: मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये फास्ट फूड।
1: अरे रानी जी, बिना फास्ट फूड खाए फास्ट चलने की तैयारी कर रही हो? पहले इन्हें खत्म तो कर लो। पूरे 350 रुपए लग गए हैं इसमें।
0: 350 रुपए लग गए हैं तो अपने पेट में ठूस लो सबको।
1: पहले बोलने में मुंह में ताला लग गया था, खरीदते समय तो दांत निकाल रही थी और अब नखरे दिखा रही हो।
0: देखो देखो जी, मुझसे ऐसी वैसी बातें मत करो, कह देती हूँ।
1: जब द्वंद युद्ध ही करना था तो घर में ही बोलती, ये पार्क में पिकनिक मनाने का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? मौसम कितना अच्छा है, सुहाना है।
0: देखो देखो, मुझे चिढ़ाओ मत, घर चलना है तो चलो जल्दी से। मुझसे ही गलती हुई जो यहाँ आने के लिए कहा।
1: हाँ, और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने तुम्हारे साथ आकर के अपने 350 रुपए का सदुपयोग किया। और अब चलो चलो ना, क्या निहार रही हो मेरा थोबड़ा।

0: मंगरू।
1: अरे ओ मंगरू।
2: आया मालिक।
3: जाकर के क्या है मालिक?
0: क्या कर रहा था रे?
3: जाकर के मनु को स्नान करवा रहा था मालिक।
0: ये शाम को नहाना, क्या बात है रे?
3: ए, जाकर के बात ये है मालिक कि मनु जब स्कूल से आया ना तो उसका बदन एकदम गर्म था, इसलिए मैंने सोचा कि पानी डालने से ठंडा हो जाएगा।
0: अरे बेवकूफ, ये तू कैसे सोच लिया?
3: जाकर के लीजिए मालिक, आप इतनी सी बात नहीं समझते हैं। उस दिन अपनी लोहे वाली कुर्सी धूप पे रहने से गर्म हो गई थी ना, तो मैंने उस पर पानी डाल दिया था, बस पल भर में ठंडी हो गई।
0: अरे घोचू, मोनू को तो बुखार आ गया होगा और तूने उसे नहला दिया, कहाँ है वो?
3: जाकर के अपने बेड पर लेटा है मालिक।
4: हाय राम, ये क्या हो गया?
0: अरे क्या हुआ? क्या बात है?
5: अभी आप सुन रहे थे सत्यनारायण प्रकाश का लिखी, क्षमा करें, अभी आप सुन रहे थे सत्यनारायण प्रकाश की लिखी लघु नाटिका सुहाना मौसम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने ही वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रास्कल का गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और साथियों ने।
1: तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां में हसी, पर्दा नशी तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां

लीजिए अब सुनिए फिल्म बॉर्डर का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, सोनू निगम और साथियों ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं बॉलीवुड के चुलबुले अभिनेता शम्मी कपूर के नाम। शम्मी कपूर जिन्हें भारतीय सिनेमा का पहला रॉक स्टार और एल्विस प्रेस्ली कहा जाता था, 31 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे शम्मी कपूर अपने अनोखे डांस, ऊर्जावर अभिनय और चुलबुले अंदाज से 1950 से 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में उन्होंने खूब धूम मचाई।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: सम्मी कपूर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम उनके बारे में आपको बताएं कि सम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था। उनके पिता महान फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, और भाइयों की अगर बात करें तो राज कपूर और शशि कपूर, ये नाम उनके भाइयों का था। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उन्होंने थिएटर से नाता जोड़ा और 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआत की। शुरुआती फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं करने के बाद उन्होंने अपनी एक नई और मस्त महुला छवि बनाई। बिना किसी कोरियोग्राफर के गाने में खुद के डांस स्टाइल को उन्होंने डेवलप किया, अपने सिरों को हिलाया और कई मनमोहक अंदाज से उन्होंने दर्शकों को खूब रिझाया। उनकी एक बहुत ही सफल फिल्म जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत।

समी कपूर ने अपने जोरदार अभिनय से फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और 1982 में फिल्म विधाता के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शम्मी कपूर ने अभिनेत्री गीतावाली से शादी की थी। 1965 ईस्वी में एक बीमारी से गीतावाली का असामयिक निधन हो गया और उसके बाद 1969 में शम्मी कपूर ने भावनगर के राज परिवार में नीला देवी से विवाह किया। शम्मी कपूर अपने चुलबुले अदाओं, अपने जोरदार अभिनय और नृत्य से खूब जाने जाते थे और फिल्मी दुनिया में उन्होंने खूब नाम भी कमाया।

लंबे समय तक किडनी की बीमारी से जूझने के बाद 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की आयु में मुंबई के पीच कैंट्री अस्पताल में शम्मी कपूर का निधन हो गया। अपने जोरदार अभिनय, अपने भावभंगी का, अपने नाच गाने के बदौलत शम्मी कपूर तमाम सिनेमा प्रेमियों के दिल में लंबे समय तक राज करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

कार्यक्रम गुलदस्ता प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मनीषी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अगर आज के संदर्भ में बात करें तो समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। फिर भी बहुत सारी जगहों पर बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। कहीं उन्हें शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं तो कहीं उनकी इच्छाओं और सपनों को महत्व नहीं दिया जाता, तो कहीं बेटों की तुलना में उन्हें कम अधिकार और सम्मान मिलता है। और बहनों, इस भेदभाव को समाप्त करने में यदि किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो है माँ की। माँ परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। उसके संस्कार, विचार और व्यवहार ही बच्चों के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। इसलिए बेटियों के प्रति समानता और सम्मान की भावना विकसित करने में माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों, माँ अपने बच्चों को बचपन से ही समानता का पाठ पढ़ा सकती है। यदि वो बेटे और बेटी दोनों के साथ समान व्यवहार करे तो दोनों को समान अवसर प्रदान करे और किसी प्रकार का पक्षपात न करे तो बच्चों के मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होती है। जब बेटी ये महसूस करती है कि उसे भी उतना ही प्रेम, सम्मान और विश्वास मिल रहा है जितना कि उसके भाई को, तब उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। शिक्षा के महत्व को समझना भी माँ का महत्वपूर्ण दायित्व है। यदि माँ स्वयं शिक्षित हो या शिक्षा के मूल्यों को समझती हो तो वो अपनी बेटी को पढ़ने, नई बातें सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो ये विश्वास दिलाती है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, जागरूक और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार है। शिक्षित बेटी न केवल अपना भविष्य संवारती है बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास में भी योगदान देती है। माँ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के कार्य केवल बेटियों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि वो अपने बेटों और बेटियों दोनों को समान रूप से घरेलू कार्य सिखाए और जिम्मेदारियां बांटे तो बच्चों में समानता और सहयोग की भावना विकसित होती है। बहनों, इससे ये संदेश जाता है कि किसी भी कार्य का संबंध किसी स्त्री या पुरुष से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सहयोग से है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो माँ को अपनी बेटी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। उसे अपनी राय व्यक्त करने, निर्णय लेने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर देना चाहिए। जब माँ अपनी बेटी पर विश्वास करती है, उसकी उपलब्धियों की सराहना करती है और कठिन समय में उसका साथ देती है, तब बेटी जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना सीखती है। माँ केवल अपनी बेटी ही नहीं बल्कि अपने बेटे का भी महिलाओं को का सम्मान करना सिखाती है। यदि वह बेटे को यह शिक्षा दे कि सभी स्त्रियां समान अधिकार और सम्मान की अधिकारी हैं तो भविष्य में वह एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेगा। इस प्रकार माँ समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज के समय में अनेक महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, प्रशासन, कला और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही हैं। माँ इन प्रेरणादायक उदाहरणों से अपनी बेटी को ये विश्वास दिला सकती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर वह भी अपने सपनों को साकार कर सकती है। सकारात्मक सोच और प्रोत्साहन किसी भी बेटी के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की शुरुआत परिवार से ही होती है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी प्रेरणा माँ बन सकती है। यदि प्रत्येक माँ अपने बच्चों में समानता, सम्मान और न्याय के संस्कार विकसित करे तो समाज से भेदभाव की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो बहनों, बस शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है और ये नहीं सोचना है कि कल से करनी है, आज से ही करनी है। तो चलिए, हमारी बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गांव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का हूँ।

0: सुनाएंगे कहानी जिसकी कथाकार हैं कल्याणी कुमारी। तो आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित कहानी।
1: एक दिन की बात है, सारे कामों को निपटाकर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। 20 मिनट के बाद मेरा बेटा आया और मेरे पैर दबाने लगा। मेरा बेटा प्रत्येक दिन पैर दबाए बिना नहीं सोता है, लेकिन आज वह कुछ कहना चाहता था या मुझसे पहले ही पता चल जाता है। मेरे कुछ पूछने के पहले ही वह बोला, माँ आप कहती हैं कि गरीब की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ बेटू, लेकिन क्या बात है? उसने कहा, माँ मेरे पास जो 3000 रुपये थे उससे मैंने अपने दोस्त अमित का नामांकन 11वीं में करवा दिया। माँ आपको तो पता है कि उसके पिताजी का 2 वर्ष पहले देहांत हो गया है, इसीलिए 2 वर्षों से वो पढ़ाई से वंचित था। जब मुझे पता चला कि पैसों के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो मुझे लगा कि उसकी मदद कर देनी चाहिए, इसीलिए मैंने नामांकन करवा दिया। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने कहा, माँ मैंने सही किया या गलत? मैंने कहा, बेटू आपने सही किया, यदि और ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं मदद कर दूँगी। उसने कहा, माँ आप अपने विद्यालय से उसके लिए किताबें ला दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है मैं किताबें ला दूँगी। बेटे के इस विचार से मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि चलो जिंदगी में यह गरीबों की मदद करेगा। बिस्तर पर पड़ी पड़ी मैं सोचने लगी, यह बचपन से ही ऐसा है। जब भी मैं रेलगाड़ी से उसे लेकर कहीं जाती थी और उस बीच यदि कोई भिखारी आ जाता तो मेरा बेटा कहने लगता, माँ इस भिखारी को कुछ दे दीजिए। मैं 5 का सिक्का निकालकर देने लगती तो वह फिर कहने लगता, माँ 5 में क्या होगा, कम से कम 10 रुपये दे दीजिए। मुझे 10 का नोट देना पड़ता। उस दिन जिस अमित के बारे में वह बोल रहा था वह उसका घनिष्ठ मित्र था। दोनों एक साथ एक ही कक्षा में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत ही तेज था, लेकिन दुर्भाग्यवश 10वीं बोर्ड के बाद उसके पिताजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिताजी एक छोटी दुकान चलाते थे। यह भाई में तो इकलौता था कि जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई थी। 10वीं के बाद मेरा बेटा DPS बोकारो चला गया। जब भी छुट्टी में घर आता तो मैं उससे पूछती थी, बेटू अमित का क्या हाल है, क्योंकि वह उससे मिलने जरूर जाता था। दुखी मन से कहता, माँ उसने कहीं भी नामांकन नहीं लिया है। मैं भी यह सुनकर दुखी हो जाती थी, क्योंकि पहले वह अक्सर मेरे घर आता था, लेकिन इधर 2 वर्षों से नहीं आ रहा था। आज जब मेरे बेटे ने उसके नामांकन की बात की तो मुझे सुकून मिला। उस रात मैं गहरी नींद सोई। दूसरे दिन मैं समय पर विद्यालय के लिए निकल गई। रास्ते में मुझे पुरानी बातें यादें आने लगी। जब मैं भागलपुर में रहती थी, मेरा बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक दिन अचानक मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको लेकर मुझे अस्पताल जाना पड़ा। चिकित्सक ने कहा इन्हें भर्ती कराना पड़ेगा। 10 दिनों तक मैं उनको लेकर अस्पताल में रही।

इधर मेरा बेटा मेरी बहन के साथ रह रहा था। एक दिन मुझे फोन किया और बोला, माँ 5 दिन के बाद मेरी परीक्षा है। शिक्षक ने SUPW की कॉपी जमा करने के लिए कहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा, कॉपी नहीं जमा करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी अभी दादी की सेवा है। ठीक है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया, क्योंकि वह दुखी था। उसको लगने लगा, इस बार तो मैं अब द्वितीय स्थान नहीं ला पाऊंगा। इसकी कॉपी तैयार करने में अभिभावक की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस कॉपी को तैयार करने में कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, जो कि मेरा बेटा ला नहीं सकता था। कुछ दिनों के बाद मैं सासू माँ को लेकर घर आ गई। उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जिस दिन रिजल्ट लाने जाना था, मैं तैयार होकर बेटे को लेकर विद्यालय गई। उसकी कक्षा में जाने के पश्चात मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि श्याम पट पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाने वाले छात्रों के नाम में द्वितीय स्थान पर मेरे बेटे का नाम था। मुझे खुशी होने के साथ साथ यह आश्चर्य भी हो रहा था।

0: कि तुम अगर इस बार कॉपी जमा नहीं करते हो तो स्थान प्राप्त नहीं कर पाओगे। मुझे क्या, मैं कॉपी नहीं भी जमा करूंगा तो कोई बात नहीं। वास्तव में अभिनव मेहनती छात्र था, लेकिन उसका स्थान 10 से 20 के बीच आता था। अभिनव और मेरा बेटा दोनों एक ही कक्षा तथा खंड भी दोनों का एक ही था। उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आंसू भर आए। मैंने अपने बेटे से कहा, देखो बेटू, आज आपकी सहायता अभिनव ने की, जरूरत पड़ने पर आप भी उसकी सहायता करिएगा। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर समय साथ दे। आप पढ़ाई में उसकी मदद कर दीजिएगा। यदि आप मदद कर दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा, हाँ माँ, मैं ज़रूर मदद करूँगा। आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। सातवीं कक्षा तक दोनों ने साथ में एक ही विद्यालय में पढ़ाई किया। उसके बाद मेरी नौकरी झारखंड में लग गई। मैं उसे लेकर झारखंड आ गई, लेकिन महीने में एक बार फोन पर दोनों जरूर बात करते थे। जब भी मैं अपने मायके भागलपुर जाती तो वह उससे जाकर जरूर मिलता था। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते तथा मस्ती भी करते थे। मैं पुरानी यादों में खोई हुई थी। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं, विद्या, आज गाड़ी से नहीं उतरना है। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरकर तेज कदमों से बढ़ने लगी। आज मैं कक्षा में बच्चों के बीच जाने पर दोस्त की सहायता के बारे में बतला रही थी। मेरा कहना था कि हमें हमेशा दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोस्त को कोई भी समस्या हो तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर मदद करने से दोस्ती और मजबूत होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर समय साथ दे। दोस्त की खुशी में खुश होना और दुख में साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन मैं अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने किसी का भला किया था। उसकी इस भलाई से किसी की ज़िंदगी संवर गई।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बनेगा।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: हमेशा से हम कहते आए हैं कि पहला सुख जो होता है वो होती है निरोगी काया। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर महिलाओं की बात करें तो अक्सर महिलाएं अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को जो है वो प्राथमिकता नहीं देती। घर परिवार हर किसी का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ता है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते करते कई बड़ी जो परेशानियां हैं उनके सामने आ जाती हैं और बाद में ना तो वो अपना ध्यान रख पाती हैं ना ही किसी और का। तो चलिए इस बात का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अब आपको ले चलते हैं कविताओं की ओर और सुनाते हैं काव्य पाठ सुलग्ना भौमिक से।
1: नमस्कार श्रोताओं, इस अविरल बहते जीवन में अनुभव का प्रसार और उसके अभिव्यक्ति का विस्तार अनंत है, जिनके लिए कतिपय छंद शब्द वर्ण या स्वर इत्यादि का प्रयोग पर्याप्त नहीं है, अपितु यूं कहे गए शब्दों का भावन तब तक अपूर्ण है जब तक वक्ता कवि लेखक आदि के प्रस्तुत संवाद श्रोता अथवा पाठक के हृदय के साथ तादात्म्य न स्थापित कर ले। मैं सुलग्ना भौमिक आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ अपने इन अगणित अनुभवों द्वारा प्रस्तावित और संचित शब्दों के छंदमय वाचन हेतु, जिनमें सुख भी है, दुख भी है, हर्ष भी है, कौतूहल भी है, आह्लाद भी है। मैं आशा करती हूँ मेरे ये कविता रूपी संवाद आपके हृदय को छू पाने में सक्षम होंगे। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता जीव जीवन के परे, जहाँ मृत्यु के परे जीवात्म के अनुभवों को प्रस्तुत करने का प्रयास कुछ इस प्रकार है। असीम के प्रवाह सा बहे वो निर्विकार सा, चेतन वह जड़ भी है, अस्थिर वह अटल भी है। वेग जीवन का कुछ यूं मृत्यु के व्यवहार में, उठती सी श्वास का छूटती सी निश्वास में। प्रसार है कण कण का जो धूल में विलय हुआ, शरीर देखो रक्त स्वेद हाड़ का वह मांस का अग्नि में विलीन हुआ। अब अनुराग न कोई शेष है, न व्यथा का अवशेष है, अब न ग्लानि का आभास है, मात्र विशाल यह अवकाश है। इस अवकाश के परे अभी जो मैं हूं वो तो कुछ और हूं, जो जल रहा जो घुल रहा उस देह से पृथक हूं। मैं आत्मा के आत्म का संचयन, मृत्यु के आलिंगन में अवशोषित जीवन। मैं किरण हूं किसी कोटि दीप्त सूर्य प्रभा का, मैं वाचक हूं अपने नवीन परिकल्पनाओं का। शब्द मेरे अभी अभेद्य हैं, अनुप्राणित आलोड़ित हैं, त्याग वसन पुरातन का कुछ अब हल्का सा हूं मैं, थकान जो मिटी मेरी कुछ अब नया नया सा हूं मैं। मैं ध्वनियों में रमा आंदोलित अभिव्यक्ति, प्रकाश में सिंचित मैं नूतन से अभिमंत्रित, कुछ नया लिखूंगा मैं अब कुछ नया करूंगा मैं, व्यर्थ जो चला गया उस काल को समर्थ करूंगा मैं। मेरी अगली कविता है उद्बोधन। प्रथा वो क्या थी, मात्र ही वो व्यथा थी, विक्षोभ से सिंचित वह अश्रुओं की रेखा थी। संसार ये मायावान है कहते ये गुणवान है, जहां जन्म ले पनपते संबंधों के विविध सोपान है। पर कभी समय के आलोड़न में छवि कुछ विलीन हुए, कभी धूमिल होती छवियों के तत्व विचारों की कटुता से मलिन हुए। कुछ छूट गए कुछ को छोड़ा, कुछ टूट गए और कुछ को तोड़ा। अब नए सृजित होते जो स्फुरण मैंने पाए हैं, लड़खड़ाते से विश्वास में वो शंकाओं के साए हैं। जाना मैंने जड़ तो कुछ है नहीं अतिरिक्त बुद्धि के, अचल है कुछ और नहीं अतिरिक्त विवेक के। आत्मा के स्पंदन पर विवेक की ही छाप है जीवन के नाप तौल में, सर्वदा विवेक ही व्याप्त है। जो करे सचेत चयन में सभी, वो विवेक का संलाप है। जड़ से चेतन के विस्तार में विवेक का ही आलाप है। संशोधनों में जहाँ अनुरक्ति का प्रसार है, नवीन उन्नयनों में अब सार गर्भित विस्तार है। सत्य को विचारणीय मान कटुता को भी है अपना लिया, कुछ इस प्रकार हृदय ने अनर्थक शत्रुता को क्षमा किया। घृणा और क्षमा के विषम भावों के प्राकट्य को लिए मेरी तीसरी कविता है कुछ इस प्रकार। कितने कारण होते हैं अगणित क्षणों में घृणा के आलिंगन हेतु, मगर पर्याप्त है एक स्फुट मात्र ही क्षमा के प्रादुर्भाव हेतु। नेत्र सजल जो बहे बहा ले जाए हर कलुष को, चैतन्य के दर्पण को कुछ यूं चमत्कृत कर जाए। वह अनुभव विरल है जो घृणा को क्षमा में बदले, पर मानव को शुद्ध कर बस वो ही मनुष्य बनाए। क्रोध की लिप्सा जो जने किसी अहंकार के वृक्ष को, न व्याप्त हो जीवन न ठहरे कोई छाँव। उस तरुवर की काया में मात्र स्वयं की अग्नि में जले, व कुंठा में भस्म होने को। क्षमा की धारा ही मात्र विकल्प है उस अग्नि के प्लावन की, जो निर्विकार हो। उत्स है जीवन के प्रवाह की, यह सतत अभ्यास है, यात्रा है एक मंथन है। खुद के विष से अमृत को पाने का, तमस के पराभव से निकल ज्योति के उत्सर्जन का। जो स्वयं से साक्षात्कार करा दे, आत्मा में नीलकंठ बसा दे, ऐसा एक तप जो हृदय को कुंदन सा दमका दे, वह प्रद्योत शिखा मन को दीप्त बना दे। मार्ग उस तक जाने का मात्र क्षमा है, क्षमा ही करुणा है, क्षमा ही विवेचना है, विवेक को स्पंदित करती सुमार्ग की चेतना है। सहज है डगर घृणा की, परिणाम जिसका कष्टदायी है, पर कठिन मार्ग पर चलकर भी जिसने क्षमा दिखाई है, वही परात्म को प्राप्त हुआ जिसने घृणा से विरक्ति दिखाई है। और अब आज की मेरी अंतिम कविता कपोत व गृहिणी। गृहिणी के कुटीर के एक कोने में अपना कोटर बनाकर रहता कपोत किस प्रकार अपनी नित्य की दिनचर्या तथा कर्मठता द्वारा गृहिणी को अपने जीवन का इंगित प्रस्तुत करता है और उसकी प्रासंगिकता गृहिणी के जीवन में क्या है, इन्हीं भावों को दर्शाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से करने का उद्देश्य है। तिनका तिनके से बांधता भोर के उगते दाना चुगता, शाखा पर बैठा कलरव करता दिन के आगमन की दस्तक देता। वह मात्र कपोत नहीं सुख का चित्रण है, जीवन की दहरी पर प्रेम का आलिंगन है। नीड़ बनाए किसी कोटर में सर्वदा रहता तटस्थ वो, रक्षा करता नवजातों की भूमिका निभाता अभिभावक की। सदा ही चलायमान है वो, वह मात्र कपोत नहीं गृहस्थ का अंकन है। संसार की नीरवता में कर्तव्य का भावन है। कुछ तो वो मुझसे रोज है कहता, अब क्या कहूँ मेरा पड़ोसी जो ठहरा। कहता तू कैसी है मेरी साथी जैसी है, तुझे भी होती है चिंता दिवा से रात्रि तक, मुझे भी है आकुलता नित जीवन के आयोजन की। तू लगी रहे दिन रात इस मकान को घर बनाने को, मैं भी हूँ संलग्न इस नीड़ को बचाने को। शायद हो संसार तेरा मेरे प्रकोष्ठ से कुछ बड़ा, पर यह तो मेरे लिए है सर्वस्व सा खड़ा। हर मौसम में व्याकुल होता हूँ, श्रम से इसे मैं ढोता हूँ, कर्म के निरंतर प्रयाण में इस नीड़ को संजोता हूँ। तेरा कुटीर मेरे कोटर से पृथक है कितना भला, तुझे भी इसका मर्म सताता और तू भी इसे रोज साधती, मैं भी इसे प्रतिदिन सवारता, फिर भी रहती कतिपय आशंका। हम एक ही विषय के भिन्न रूप हैं, फिर भी हैं एक से, पृथक होकर भी रहे अभिन्न, मानो दर्पण और प्रतिबिंब जैसे। तू कुछ ठहरी बड़ी सी मुझसे, और मेरा जीवन है बड़ा सा तुझसे, तेरे प्रयोजन है विराट से, मेरी आकांक्षा है छोटी सी। पर जीवन के इस पट पर हम दोनों का चित्रण है एक सा, इस चित्रण के उस मंचन में हम दोनों का योग है एक सा। धन्यवाद।
0: तो बहनों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
2: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है

0: है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं,
0: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओ, ओ, ओ, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
4: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
4: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दूं?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर

0: आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
0: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
4: सिद्धार्थ को मिलना
3: चाहिए।
0: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
0: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के

0: सुमित,
1: तुमसे जरा सी भूल हो गई।
0: सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
3: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
4: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
3: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
4: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
3: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
4: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
3: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
3: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
5: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
3: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी, और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
6: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन

0: यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो घर में दोपहर के ठीक 1 बजा है। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं सच्चिदानंद सिंह। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

जय भूसुररिया हमरे बाबूजियो, छोड़ी के नहीं हरबा एक दिन, जय भूसुररिया।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाढ़ इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की।
3: एंड विद दैट वी एंड दिस न्यूज बुलेटिन।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मुरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित लोक भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर उसे संबंधित बीएलओ को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री तथा अन्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले गणना प्रपत्र को समय पर भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को सफल तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की और विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मतीकरण और निर्माण पर बातचीत की।
5: तो हालात राज्य की ठीक नहीं है। कब जानते भाई कहाँ पैसा जा रहा है, लेकिन जनता को भाई नागरिक सुविधा चाहिए ना, पानी बिजली सड़क। बिजली क्या स्थिति है राज्य की, किसी छुपी है क्या? सिल्ली यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सांसद, मैं मंत्री हूँ, सांसद को पैरवी करनी पड़ती है, तब एक हफ्ता 10 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लगता है। तो चीजें बहुत डिरेल हुई है और स्थिति राज्य की डामाडोल है।
4: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पुलिस के सामने हत्या कर देना गंभीर मामला है। श्री मरांडी ने इस घटना के दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग की।
6: में आज

0: महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
1: दो दो पुलिस कप्तान हटाए गए, थानेदार सस्पेंड हुआ, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए, प्रशासनिक कार्रवाई और SIT का गठन हुआ, मुख्य आरोपी पर पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई। इससे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और क्या हो सकती? उसमें आप बंद बुलाइए, मशाल जुलूस निकालिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए।
0: राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मूरी रेलखंड के 59 किलोमीटर विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल पहुंचकर ब्रेन मलेरिया से पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, घाटशिला और मुसाबनी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता जताई। श्री मुंडा ने जिला प्रशासन से तत्काल युद्ध स्तर पर रोकथाम, उपचार और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।
2: फैंसीफरम ब्रेन मलेरिया के नाम से बच्चों लगभग इस समय 35 इस तरह के पेशेंट यहाँ एडमिट है, उसमें से अधिकतर बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अस्पताल नहीं पहुँचे, इसलिए वो सारे बच्चों की मृत्यु हुई। मैं ये आग्रह करूँगा खास करके ग्राम प्रधानों से और मुखिया से, ऐसे प्रभावित लोग उनको विलम्ब किए बगैर तुरंत अस्पताल के लिए भेजे।
0: घरेलू शेयर बाजार आज 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 244 अंक की उछाल के साथ 77,166 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,086 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
3: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: NTPC माइनिंग लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI ने कोयला एवं खनिज परियोजना के विकास और संचालन के लिए 3 वर्षीय तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अन्वेषण, खान संचालन, परियोजना प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्षमता निर्माण सहित खनन मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजार

0: अलीबाग, पलामू, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटों में तेज हवा चलने, बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने SIR के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर BLO को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने EPFO योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मोरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और NTPC और CMPDI के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ MOU। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। कलाकार हैं सच्चिदानंद सिंह। आइए इनसे सुनते हैं ये श्रृंगार गीत।

0: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी, वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: लीजिए अब सुनिए सच्चिदानंद सिंह से ये पूर्वी
0: हिंदुस्तान के सहयोग से।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहरी इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थे सच्चिदानंद सिंह। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है धारावाहिक गंगा के सुरताल की 10वीं कड़ी। इस धारावाहिक के लेखक हैं अशोक अंचल।

0: महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल वाराणसी से चलकर गंगा का आगमन होता है भोजपुर क्षेत्र बक्सर में।
1: बक्सर को बिहार राज्य का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। इस जगह का ऐतिहासिक के अलावा धार्मिक महत्व भी है।
0: कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने बहुत लंबे समय तक बक्सर में गंगा नदी के तट पर तपस्या की थी।
1: यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास काल में सीता तथा लक्ष्मण के साथ पहुंचकर इसी गंगा तट पर ताड़िका राक्षसी का वध किया।
0: मेजर मेनरो और शाह आलम के बीच घमासान युद्ध इसी गंगा भूमि पर हुआ था। दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए, खून की नदियां बहीं। ऐसा माना जाता है कि गंगा ने अपनी धारा से उस स्थान को पवित्र किया।
1: गंगा ने अपने उद्गम काल से अब तक इतिहास के कई पन्नों को पलटते देखा है।
0: हे मुक्तिदायिनी गंगा, तुम्हारी आराधना भोजपुर प्रांत के लोग क्यों ना करें? बक्सर निवासियों के दिलों में तुम श्रद्धा स्वरूपिणी हो।
1: गंगा के उद्गम से गंगा सागर तक की यात्रा के प्रति भोजपुर निवासियों का अपना ही दृष्टिकोण है।
0: हे गंगे, तुम गौमुख से चलकर हरिद्वार पहुंचती हो। यहां से विभिन्न धाराओं में बहकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती हो।
1: गंगा गंगोत्री से गगनचुंबी पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। धाराओं के बीच बड़ी बड़ी चट्टानें तुम्हें रोकने का प्रयास करती हैं। तुम चट्टानों पर क्रोधित हो आगे बढ़ती ही जाती हो। तुम्हारा ये क्रोध आग में खौलते हुए जल की तरह दिखाई पड़ता है। चारों ओर घना कोहरा सा छा जाता है, पर मैदानी भाग में पहुंचकर तुम बिल्कुल शांत स्वरूपिणी हो जाती हो।

0: इस गीत में चट्टानों पर उफनती गंगा का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है।
1: गंगा की सुंदरता की व्याख्या मात्र यहीं आकर समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि हर भूभाग और प्रांत में इसे अलग अलग रूपों में देखा गया है।
0: आगे इस गीत में समतल भूभाग की शांत गंगा का वर्णन है। सुबह के सूरज की पहली किरण जब गंगा पर पड़ती है तो लगता है आकाश से सभी तारे उतरकर गंगा की गोद में समा गए हों। मैं कूद पड़ती हूँ तुम्हारी गोद में उन तारों को छू लेने के लिए।
1: हे गंगा माँ, सुबह तुम्हारी गोद में स्नान करने से तुम सभी के सभी कष्टों को दूर करती हो, इस तरह तुम मुझ पर भी कृपा करना।

que

Oh my.

0: ऐसी बात नहीं है कि गंगा समतली भूभाग में बिल्कुल शांति रहती है, बल्कि समय समय पर विकराल रूप भी धारण करती है। गंगा, तुम्हारे विकराल रूप को देखकर इंसान भयभीत हो जाता है। तुम्हें शांत करने के लिए इंसान पूजा प्रार्थनाएं करने लगते हैं।
1: हे माँ गंगा, तुम्हारे विकराल रूप से तो राजा दशरथ भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना की थी। हे गंगे, तुम्हारे विकराल रूप को देखकर मुझे भय लग रहा है, अतः तुम अपनी लहरों को समेट लो और मैं पीठापाठी चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करूंगा।
0: ये सुनकर गंगा कहती है, हे राजन, मेरे इस विकराल रूप को देखकर आप तनिक भी भयभीत न हो। मैं तो केवल प्रभु राम के दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। उनके दर्शन कर मैं अपनी लहरों को सिमटा लूंगी।

0: लेकिन आगे इस गीत में बात बिल्कुल उलट है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है और गंगा किनारे बसने वाले लोग इस पुण्य का लाभ खूब उठाते हैं।
1: पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री भी कार्तिक मास में गंगा स्नान से वंचित रह जाती है, तो वो अपने पति से अनुरोध करती है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान कर हम दोनों उसका लाभ उठाएं।
0: पति जाने से इनकार करता है और कहता है, यदि तुम्हारे पतिव्रता में शक्ति है तो गंगा को अपने आंगन में बुलाओ।
1: ये बात सुनकर स्त्री तपस्या में बैठ जाती है और गंगा से प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया, मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करो और मेरे आंगन में चली आओ।
0: इस बात को सुनकर गंगा कहती है, मेरी गोद में हजारों लाखों पतिव्रता स्त्रियां स्नान करने मेरे घाट तक आती हैं और मन्नतें मांगती हैं, फिर मैं कैसे तुम्हारे आंगन तक आऊं?
1: इस बात पर क्रोधित होकर स्त्री कहती है, यदि तुम मेरे आंगन तक नहीं आई तो मैं अपने पतिव्रत तप से तुम्हें श्राप दे दूंगी कि तुम्हारे जल में रेत और पत्थरों का ढेर लग जाए।
0: श्राप से भयभीत हो गंगा अपना विकराल रूप धारण कर उस स्त्री के आंगन तक चली आती है।

0: दरअसल गंगा अपना विकराल रूप सावन भादों के महीने में ही धारण करती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे बसने वाले लोगों की नींद सावन भादों के महीने में लगभग उड़ ही जाती है, क्योंकि ये भय रहता है कि गंगा पता नहीं कब किस स्थान को अपनी आगोश में ले ले।
1: इस नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिसका मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: आप सुन रहे थे धारावाहिक गंगा के सुरताल के 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार ISPT से मलाही पकड़ी तक हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत समृद्ध बिहार थीम पर आयोजित जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था को कमजोर करता है तथा विकास की गति को बाधित करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इधर इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में सभी राज्यवासियों से अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह बांधपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। इंतखाबी कमीशन ने पटना की बांकीपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी होगा और उसी दिन से पर्चा नामजदगी का काम भी शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 जुलाई मुकर्रर है। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफे के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्राइमरी कॉरिडोर के तहत मलाही पगड़ी मेट्रो स्टेशन की तौसी का इफ्तिताह किया और मेट्रो सर्विस की तौसी की। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल खिदमात की तौसी ISBT से मलाही पगड़ी तक हो गई है। इस मौके पर डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शहरी तरक्यात के वजीर नितीश मिश्रा, BJP के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद समेत कई मुअज्जज लोग मौजूद थे। रियासत में आज बिहार चौकसी बेदारी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आला सम्राट चौधरी ने बिहार बेदारी हफ्ते का आगाज़ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत खुशहाल बिहार थीम पर मुनक़िद बेदारी हफ्ते का मकसद बदउनवानी के मामले में सिफर टॉलरेंस की पॉलिसी को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी समाज और सिस्टम को कमज़ोर करती है और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करती है। वजीर आला ने लोगों से बदउनवानी से पाक बिहार की तरक्की में सरगर्म हिस्सेदारी निभाने की अपील की है। इधर इस मौके पर गवर्नर सैयद अता हसनैन ने अपने पैगाम में सभी बाशिंदों से अपने अपने दायरे कार में ईमानदारी और शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देने की अपील की। रियासत में 14 अगस्त 2026 तक 1 करोड़ लोगों की TV स्क्रीनिंग का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी प्रति अमृत ने मिशन मोड में मुहिम चलाकर हदफ को हर हाल में पूरा करने की हिदायत की है। TV से पाक भारत मुहिम की जायजा मीटिंग में बताया गया है कि रियासत की 2,76,00,000 के निशाने वाली आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। मानसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे ज़्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास ज़िले में शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से तनख्वाह कमीशन के अंडर सेक्रेटरी आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफसर एक सुबकदोश मुलाजिम से एरियर की अदायगी के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु जनूबी तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में बिहार के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना इलाका के तहत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना इलाका से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से कसीर मकदार में शराब के साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। मगरबी चंपारण जिले के रामनगर थाना इलाका में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से ज़बरदस्त आग लग गई। आगजनी के वाक़े में लाखों की मालियत जलकर तबाह हो गई। हादसे में एक नौजवान भी शदीद तौर से झुलस गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
4: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे?
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण सभा में दोपहर समाचार के लिए।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और

0: जापान के बीच
1: किया जाना चाहिए। वी मस्ट एड्रेस द कंडीशंस कंड्यूसिव टू द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म।
2: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
2: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
4: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: पगला कहीं का फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी से।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग, कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार थे जगजीत सिंह। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। नीचे सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हुए हैं। आपसे लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था, और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले,
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं
0: काम करते थे,
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़की के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
0: बिल्कुल
1: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी। अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
0: बिल्कुल
1: करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: जरूरी है।
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले
0: ले
1: सकती है,
0: सकती है,
1: अपनी
0: पा
1: इच्छा पूरी
0: सकती है,
1: कर सकती
0: अपनी
1: है,
0: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी
1: हाँ
0: कर
1: पूरी
0: लेती
1: कर
0: है,
1: सकती है।
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
1: पूरे परिवार
0: परिवार को
1: को।
0: होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
0: बिल्कुल
1: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, ने पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है। अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता
1: होता तो है,
0: है ना। हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूं, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है,
1: बिल्कुल
0: आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूं, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले
1: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: तो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी,
0: सुनते
1: सर,
0: हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर गैंग स्पॉन्सरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी,
1: आपकी आवाज सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सुनता हूँ मैं, तो 50 साल का रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश
0: जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म का। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिश्चित फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलुम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलुम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी, एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ,
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब।
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म में इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और KL सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार।
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी। और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर।
0: गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर।
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर मैंने खत भेजा है सर। जी
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए
0: ओहो
1: मेहताब दर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया मेरा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरे बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं, और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात की सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जानकर के। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा
1: और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गया है, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के,
0: हाँ हाँ
1: और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों को
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं, और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग के
1: तो
0: सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा
1: जी
0: रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल की जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते
0: जल्दी
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी है,
0: बिल्कुल
1: और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है, और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से। सर,
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल
0: और
1: रही हूँ।
0: सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह सुबह चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार, सब सुनती हूँ मैं। हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी, चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की टू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना? कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल, खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी,

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं
1: भैया
0: आप?
1: जी अपना बताइए। जी
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप
1: जी
0: लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहां पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम में करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं
1: जी
0: अपना
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एनाइजर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको। फिल्म
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, और गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: बहुत
0: तो सुनिए अपनी
1: आई
0: पसंद का गाना
1: हमारी
0: पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो ना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। उन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय में जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियां मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय, फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ। हाँ
0: आपकी नज़र से वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। यह हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं। सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी जी जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी।
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी, कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते जी। कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी, तो सुबह से लेकर
1: और
0: रात तक अलग
1: यस
0: अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना? पुराने
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा,
0: जी
1: और
0: जी
1: शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना
0: जी
1: अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजयपथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सहीन ने की। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार, आदाब और आप सभी प्यारे श्रोताओं का दिल से स्वागत है आपके अपने शो युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी। उम्मीद है आपका दिन मुस्कुराहटों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बीत रहा होगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए क्या लेकर आए हैं जान लेते हैं। हम जानकारी, इतिहास, समसामयिकी और मनोरंजन का शानदार संगम लाए हैं। चर्चा करेंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस पर और जानेंगे शिमला समझौते की वर्षगांठ का महत्व। होंगे डेली ट्रिविया, ओबी, इतिहास दर्पण, फन फैक्ट और समसामयिक खबरों के रोचक पड़ाव। और हाँ, इन सभी शानदार सेगमेंट्स के बीच आपका मनोरंजन करेंगे बॉलीवुड के सुपरहिट गीत, ताकि जानकारी के साथ साथ संगीत का भी भरपूर आनंद मिलता रहे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम को इस बॉलीवुड गीत से। इन गीत को हमने लिया है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गाने को प्यारी सी आवाज़ों से सजाया है अरिजीत सिंह और हमारी मेलोडियस क्वीन श्रेया घोषाल ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। उम्मीद है यह गीत आपको पसंद आई होगी। अब समय है आज के पहले और बेहद खास सेगमेंट चर्चा का। विषय है विश्व खेल पत्रकार दिवस। प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना तथा खेल पत्रकारिता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। खेल पत्रकार खेल जगत और दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे केवल मैचों का विवरण ही नहीं देते, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, उपलब्धियों, रिकॉर्ड, खेल नीतियों और खेल भावना से जुड़े विषयों को भी निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रूप से जनता तक पहुँचाते हैं। उनकी रिपोर्टिंग से खेलों को लोकप्रियता मिलती है और नई प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। आज के डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। प्रिंट मीडिया के साथ साथ टेलीविज़न, ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के माध्यम से खेल समाचार तुरंत लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में पत्रकारों के लिए निष्पक्षता, सत्यता और जिम्मेदारी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि खेल पत्रकार केवल समाचार नहीं देते, बल्कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने और समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके समर्पण और योगदान का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे विश्व खेल पत्रकार दिवस पर चर्चा। अब अगले चर्चा की ओर बढ़ते हैं। विषय है शिमला समझौता वर्षगांठ। 2 जुलाई भारत और पाकिस्तान के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से करना, आपसी संबंधों को सामान्य बनाना तथा क्षेत्र में शांति बनाए रखना था। समझौते के अंतर्गत 1971 के युद्ध विराम के बाद बने सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही युद्ध बंदियों की रिहाई, सेनाओं की वापसी और कूटनीतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने पर भी सहमति बनी। शिमला समझौता इस बात पर बल देता है कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे तथा किसी भी मुद्दे को बल प्रयोग के बजाय बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह समझौता आज भी दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु माना जाता है। शिमला समझौते की वर्षगांठ हमें संवाद, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाती है। यह अवसर केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं बल्कि यह संदेश भी देता है कि अस्थायी शांति और विकास का मार्ग आपसी विश्वास, कूटनीति और निरंतर संवाद से प्रशस्त होता है। दोस्तों, ये थी आज की चर्चाएं। अब आज के डेली ट्रिविया का प्रश्न सुन लेते हैं। हमारा प्रश्न है आपके लिए, आकाशवाणी किस संगठन के अंतर्गत कार्य करती है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए साथियों, आकाशवाणी किस संगठन के अंतर्गत कार्य करती है? आप इसका उत्तर सोचिए, शो में आगे हम आपको सही उत्तर बताएंगे। अब अगली प्रस्तुति है हमारे साप्ताहिक स्तंभ ओबी की। आज के बाह्य प्रसारण में हमने वन महोत्सव पर कुछ युवाओं से बातचीत की है। बातचीत के अंश को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां युवाओं की सोच, ऊर्जा और सकारात्मक पहल को मिलता है एक सशक्त मंच। दोस्तों, आज के बाह्य प्रसारण में बाहर आए हैं कुछ युवाओं से बातचीत करने वन महोत्सव के ऊपर। साथियों, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, संतुलित जलवायु और जैव विविधता, इन सभी का संबंध पेड़ों और वनों से है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यदि आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, ताकि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा वर्ग, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले। आइए हमारे कुछ युवा साथियों से जानते हैं वन महोत्सव का महत्व क्या है, युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, वृक्षारोपण को सफल कैसे बनाया जाए और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। तो आइए बिना किसी देरी के मिलते हैं हमारे पहले साथी से। सबसे पहले आपका स्वागत है कोमल। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, वन महोत्सव क्या है और आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता है?

0: वट महोत्सव केवल एक वृक्षारोपण अभियान नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसका उद्देश्य लोगों में पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र जैसी समस्याएँ पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे समय में वन महोत्सव हमें यह याद दिलाती है कि यदि हमें स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य चाहिए तो हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और अनेक जीव जंतुओं का घर होते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ेगा। इसलिए केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल भी करे। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक प्रभावी बना सकती है। यदि हर युवा हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसे बड़ा होने तक सुरक्षित रखे तो देश में हरियाली बढ़ाने का सपना साकार हो सकता है। वन महोत्सव हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की रक्षा करना है।
1: बहुत सुंदर विचार सचमुच। केवल पौधा लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले युवा साथी सौरभ की ओर। आप बताएं, युवा वन महोत्सव को सफल बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं?
2: नमस्कार। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें तो बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। वन महोत्सव के दौरान युवा अपने विद्यालय, महाविद्यालय, मोहल्ले और गांव में वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। वे लोगों को पौधों के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैला सकते हैं। युवा स्वयं पौधे लगाकर दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। वे अपने जन्मदिन, त्योहारों या किसी विशेष अवसर पर पौधे लगाने का परंपरा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करना भी युवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि पौधों को समय पर पानी, सुरक्षा और उचित देखभाल मिलेगी तभी वे बड़े वृक्ष बन पाएंगे। आज पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का एक हिस्सा बनना चाहिए। यदि युवा इस दिशा में आगे आएंगे तो समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और हरियाली बढ़ाने का सपना जल्दी पूरा होगा। नमस्कार।
1: बहुत प्रेरणादायक बात कही आपने। युवा सच में बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है। अब सुनते हैं हमारे तीसरे साथी की राय मीनाक्षी से। आप बताएं, वृक्षारोपण

0: पौधों को नियमित पानी, खाद, धूप और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उन्हें पशुओं से बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाए जाते हैं। समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई और सफाई भी ज़रूरी है। यदि हर व्यक्ति अपने लगाए हुए पौधे की जिम्मेदारी ले तो वृक्षारोपण अभियान कहीं अधिक सफल हो सकता है। हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो, इससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। वन महोत्सव केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि लंबे समय तक निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जब पौधे बड़े होकर वृक्ष बनते हैं तभी पर्यावरण को वास्तविक लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल ही सफलता है। अब अपने अगले युवा मित्र की ओर चलते हैं। ज्ञानवती, आप बताएं, वनों के संरक्षण से समाज और पर्यावरण को क्या लाभ मिलते हैं?
2: मेरा संदेश यही है कि वन महोत्सव को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम ना समझें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी जिम्मेदारी भी स्वयं निभाएं। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर पौधों की देखभाल करें तो हर घर हरियाली से भर सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, जल की बचत करें और पेड़ों की अनावश्यक कटाई का विरोध करें। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर नियमित वृक्षारोपण अभियान चलाने चाहिए। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हरियाली बढ़ाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और एक स्वच्छ, सुंदर तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। वनों का संरक्षण वास्तव में जीवन का संरक्षण है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमने जाना कि वन महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारे सभी युवा साथियों ने अपने विचारों के माध्यम से यह संदेश दिया कि यदि प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाए और उसकी नियमित देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण का सपना अवश्य साकार हो सकता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को शुद्ध हवा, छाया और जीवन देगा।
3: श्रोताओं, अभी आप साप्ताहिक स्तंभ ओबी में वन महोत्सव पर युवाओं से बातचीत के अंश को सुन रहे थे। सारे युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी यह विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। अब जानकारी के इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और संगीत की दुनिया की ओर चलते हैं। अगला गीत रिश्तों की खूबसूरती, अपनापन और दिल की भावनाओं को बेहद सादगी से बयां करता है। तो आइए सुनते हैं हम पटी शर्मा की दुल्हनिया का यह गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

प्यारे श्रोताओं, उम्मीद है आपको यह मधुर गीत पसंद आया होगा। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट इतिहास दर्पण का, जहां हम इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी घटनाओं पर नज़र डालते हैं जिन्होंने अपने समय में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो आइए जानते हैं 2 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाओं पर। आज के दिन 1757 में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता और मजबूत हुई। 1972 में आज के दिन ही भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत ने आज के दिन ही कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में निर्णायक बढ़त हासिल की। आज के इतिहास दर्पण में इतना ही। इतिहास हमें केवल बीते समय की घटनाओं से परिचित नहीं कराता, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। अब वक्त है आज के फन फैक्ट की। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आकाशवाणी वर्षों से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम बनी हुई है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, जानते हैं डेली ट्रिविया के प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, आकाशवाणी किस संगठन के अंतर्गत कार्य करती है? इसका सही उत्तर है प्रसार भारती। मित्रों, अब समय है सामसामयिक खबरों का। बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन को सौंपा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश बन गया है। आज के सामसामयिकी में इतना ही। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। अब समय है कार्यक्रम में संगीत का रंग घोलने का। अगला गीत अपने मधुर बोल और दिल को छू लेने वाले एहसास के लिए आज भी श्रोताओं की पहली पसंद बना हुआ है। आइए सुनते हैं फिल्म क्रूक का ये गीत निखिल डिसूजा की आवाज़ में।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आज हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज की हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आए होंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे नए जानकारियों, नए विषयों और बेहतरीन संगीत के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में अभी पहला गीत आपने सुना फिल्म बॉडीगार्ड से। इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने, नीलेश मिश्रा ने इसके बोल लिखे थे, आवाजें थी एश किंग और क्लिंटन सेरेज़ो की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए सुनते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का ये गीत। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और एलिशा मिंडोंसा ने। शंकर एहसान और लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं निखिल डिसूजा और मोनाली ठाकुर की आवाज में अनजाना अनजानी फिल्म का शीर्षक गीत। नीलेश मिश्रा ने इसके बोल लिखे हैं, विशाल और शेखर का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म जन्नत 2 से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान और साथियों ने। प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया है और इसके बोल लिखे हैं संजय मासूम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए लाल सिंह चड्ढा फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी और अरिजीत सिंह ने।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका विनय कुमार शुक्ल के गाय लोकगीत। आज संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका सीमा बैनर्जी की प्रस्तुति सुनेंगे आप। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारे दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक भेंटवार्ता, विषय है पार्किंसंस रोग। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर पंकज कुमार। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आप सुनेंगे सबसे पहले सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार गोपाल कृष्ण मिश्र की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी कथा में एक वार्ता, विषय है गांधी और ग्राम पंचायत। वार्ताकार है डॉक्टर विजय कुमार। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस दौरान जानेंगे आपको जरूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां।

श्रोताओं, कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार विजय कुमार दास की प्रस्तुति। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार बासुकी प्रसाद यादव के गाय लोकगीत। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता। 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल दोपहर 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायक कलाकार पवन कुमार राम की प्रस्तुति। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से लेकर आएंगे हम। संध्या 5:00 आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में एक भेंटवार्ता। विषय है आंत के विभिन्न रोग, कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर कुमार रत्नेश, भेंट करता है सचिन कुमार। कल संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलरी में गायक कलाकार सुरेंद्र कुमार राय की प्रस्तुति। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल लेकर आएंगे हम। 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार श्री केदारनाथ मिश्र से ख्याल गायन। आप सुनेंगे राग पूर्या में। 10:30 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं और किसान भाइयों बहनों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार।
1: सभी श्रोताओं को पूर्व का भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विदो भाई।
0: नमस्कार पूर्व भाई, बताबो की हाल समाचार छे?
1: सब बहुत बढ़िया एकदम। हाल समाचार तो विदो भाई सब ठीक है। हाँ। लेकिन विदो भाई बदलता मौसम जो आप देख रहे हैं, हाँ, कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी छांव, जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
0: हाँ
1: जी विदो भाई,
0: हाँ, हाँ।
1: अभी देखिए जो मौसम बदल रहा है,
0: हाँ,
1: इसी
0: हाँ।
1: मौसम में ना हमें ज्यादा ध्यान रखने के अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ।
1: अगर नियमित तौर पर व्यायाम हो और खाद्य हम जो पदार्थ खा रहे हैं अगर उसमें हम संतुलित भोजन की ओर ध्यान दें, और अभी जैसे गर्मी कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसके वजह से हमें अपने अगर खाद्यान्नों पर ध्यान दिया तो हमारा एकदम शरीर जो है ना चुस्त दुरुस्त एकदम तंदुरुस्त रहेगा। और ख़ास तौर पर अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो है समाप्त हो गई हैं, और बच्चे जो है ना स्कूल अब जाना शुरू कर दिए हैं, और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें धूप का सामना करना पड़ रहा है, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें वो थोड़ा सा पेयजल अपने साथ रखें, और उनके जो टिफ़िन में जो कुछ अगर फल हो कुछ फ्रूट हो, और हमेशा उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ के रूप में कुछ ना कुछ पीते रहें, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
0: हाँ तो पूर्व भाई, अब तो गर्मी के मौसम के बाद बरसात के मौसम आवी रहल छे।
1: एकदम
0: जो है मौसम में अच्छा वर्षा होले तो उम्मीद करै छे कि कृषि के उपज भी अच्छा होते।
1: बिल्कुल,
0: भारत एक कृषि प्रधान देश छके।
1: यहाँ
0: के अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर करै छे, आरु खेती के वास्ते वर्षा नितांत आवश्यक छे।
1: एकदम,
0: आ वर्षा के मौसम में खेती के साथ साथ पेड़ लगाना भी उपयुक्त रहे।
1: बहुत सबसे ज्यादा बढ़िया
0: हाँ,
1: उपाय कि पेड़ एकदम खूब मात्रा में पेड़ लगाया जाए।
0: हाँ
1: जी,
0: पेड़ जे छे धरती के रक्षा करे वास्ते पेड़ सबसे ज्यादा उपयोगी छे। वृक्षारोपण के तरफ लोग के ध्यान केंद्रित करे वास्ते
1: अच्छा।
0: हर वर्ष देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनेलो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वन महोत्सव सप्ताह मनाए के मुख्य उद्देश्य वन के सुरक्षा आरु ओकरो कटाई से जीव जंतु पर जे दुष्प्रभाव पड़े छे ओकरो प्रति जागरूकता फैलाना छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एकरो एक उद्देश्य ई भी छे कि समाज में एक विशेष भावना का जागृत करना छे।
1: एकदम,
0: लोग के ध्यान है विषय पर केंद्रित रहे, यही वास्ते वन महोत्सव सप्ताह मनेलो जाए।
1: जी विदो भाई, जैसे वन महोत्सव मनाने का जो आपने उद्देश्य की बात कही है, इसमें तो हमें सबसे पहले जागरूक होकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।
0: हाँ,
1: ये सिर्फ
0: हाँ,
1: सरकार का ही काम नहीं है।
0: हाँ,
1: ये हमारा भी दायित्व बनता है।
0: हाँ,
1: कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए।
0: पेड़ और पूर्व भाई, खाली पेड़ लगेला से नहीं होइ छे, ओकरो बाद जे छे पेड़ के बचाना केना चाहिए एकरा भी ध्यान दे लगे छे। कना पेड़ बहुत जब है सप्ताह चले छे तो बहुत जगह देखो वन महोत्सव सप्ताह में पेड़ तो लगा दे छे, लेकिन ओकरो बाद ओकरा ध्यान नहीं दे छे जेकरा कारण पेड़ मरी जाए छे।
1: एकदम, इस पेड़ भी ध्यान देना चाहिए।
0: जितना ध्यान पेड़ का लगाए दे छे उतना ध्यान जे छे ओकरा बचाए पे भी देना चाहिए। समय समय पे जे छे जल देना चाहिए। आसपास जो घास भूसो इसनी बढ़ी गलो छे तो ओकरा जे छे अलगाए देना चाहिए। यानी हमेशा थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना चाहिए। आरु है काम में जे छे सरकार के साथ साथ जनता के भी जागरूक होने लगते।
1: एकदम एकदम,
0: जनता जागरूक होते एकरो प्रति सचेत रहते तब है ई वन महोत्सव सप्ताह के जो उद्देश्य छे वो सफल होते।
1: जी जी जी। और विदो भाई, पर्यावरण में जो हम अगर मान लीजिए पेड़ को बचा रहे हैं,
0: हाँ,
1: तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना और उसे हाँ, संतुलित बनाना भी हमारा ही काम है।
0: देखो पेड़ लगेला से की फायदा होइ छे कि बारिश जे छे उ समय समय पे होइ छे। आ बारिश जब समय पे होतो तो वैसे कृषि जे छे अधिक से अधिक लाभ मिलतो। कृषि से जब अधिक से अधिक अन्न के उपजा होते तो हम सने अपनो उपभोग तक करबे करबे, साथ साथ जे छे कृषि के मतलब अन्न के निर्यात भी करबे। तो अन्न के निर्यात करबे तो विदेशी मुद्रा के भंडार भी बढ़ते। यानी देखो एकरो प्रत्यक्ष आरु अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों छे। यही वास्ते पेड़ लगाए ध्यान देना चाहिए और साथ साथ जे छे पेड़ के कटाई पे जे छे रोक लगाना चाहिए।
1: जी जी।
0: भारत में वन आरु वृक्ष का काटे से रोके के प्रयास सामाजिक संस्था आरु पर्यावरण प्रेमी द्वारा आजादी के बाद से ही शुरू कर लगलो छे।
1: अच्छा।
0: एक तरफ जहां 1950 में वन के बचाए वास्ते वन महोत्सव के शुरुआत कर लगले, वहीं 70 के दशक में जब देश में वन संपदा के अपार भंडार छले तभियो पर्यावरण के चिंतित होता हुआ लोग न वृक्ष के बचाए वास्ते चिपको आंदोलन शुरू कर लो
1: छले।
0: हाय पूरो भाई कल्पना करो
1: अच्छा।
0: कि जो हमरा सनी के पूर्वज ने वृक्ष नहीं लगती है आरु सिर्फ काटती है तो एकरो की प्रभाव पड़ती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल विदा भाई, यही तो सोच समझकर हमें आने वाली जो आगे वाली पीढ़ी है
0: हाँ।
1: उसके लिए भी वातावरण तैयार रहे हमें हाँ। ही इसका ध्यान देना पड़ता हाँ। है।
0: जो हम सनी आबे वाला पीढ़ी के एक साफ सुथरा पर्यावरण दै छो तो एकरा वास्ते जे छे पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति सावधान रहे लगते।
1: जी जी, और विदो भाई देखिए पेड़ जो है ना, पेड़ हाँ। पौधे जो हमारा वातावरण है ये तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं
0: हाँ।
1: सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वर्षा चक्र को आपने जैसा कहा कि हाँ। संतुलन बनाए रखने हाँ। में सहायता करते हाँ। हैं हाँ। और सबसे बड़ी देखते हैं अक्सर हमारे बिहार में बाढ़ आते रहती है
0: कहीं अतिवृष्टि के समस्या तो कहीं अनावृष्टि के समस्या हो फसल भी नष्ट हो आरो पूरो भाई पेड़ लगा के सबसे बढ़िया समय बरसात के मौसम ही छे। बरसात के मौसम में पौधा का भरपूर पोषण मिले छे। कुछ राज्य न तब बरसात के मौसम में पौधा लगाए वास्ते विशेष अभियान चलाए छे। समाज सेवी संस्था आरो अन्य लोग भी है अभियान में शामिल हुई।
1: बिल्कुल विदो भाई, आज के दिन बहुत सारे जगहों पे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे विद्यालय महाविद्यालय में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है और पर्यावरण जागरूकता जैसे की अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पौधा भी निःशुल्क बांटा जा रहा है बहुत जगह की, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाषा निबंध चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं भी हो रही है और पेड़ पौधों की देखभाल और संरक्षण का हम संकल्प भी ले रहे
0: हैं। वायु प्रदूषण केवल मानव जाति वास्ते नहीं बल्कि सब प्राणी वास्ते हानिकारक छे। यही वास्ते वन महोत्सव सप्ताह के मनाए का उद्देश्य सफल तब है होते जब हमरा सनी के वृक्ष लगाए के साथ साथ वृक्ष बचाए के भी संकल्प लेबे।
1: बिल्कुल विदो भाई, अभी का जो समय है ना, एक पेड़ ना 100 के बराबर है
0: हाँ।
1: और वन महोत्सव सप्ताह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और हरियाली भरा रहेगा।
0: चलो कार्यक्रम में आरुष्नी बात के चर्चा करबे। अभी श्रोता लोग का एक झूमर सुनवाई छे।
1: ओके।

0: शब्दों में और गीत के साथ एकदम कह जाते हैं और
1: एकदम सीधा श्रोता के मर्म का स्पर्श करे छे,
0: जी जी
1: जकरा जे छे श्रोता काफी गदगद हो जाए छे।
0: अभी देखिए विदो भाई, हम ना वनों के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, हाँ। कि वन हमारे लिए कितने जरूरी है और वन महोत्सव का सप्ताह भी चल रहा है, हाँ, आपने हाँ। कहा कि 1 तारीख से भी 7 तारीख तक ये सप्ताह चल रहा है, हाँ। तो इसी बीच में अपने श्रोताओं को एक हम लोग कुछ सुनवाते हैं बढ़िया सा,
1: हाँ हाँ, एक पूर्व प्रसारित वार्ता के बागों का जीर्णोद्धार,
0: जी
1: तो बाग के जीर्णोद्धार केना करना चाहिए एकरो बारे में अभी एक विस्तृत वार्ता सुनवाई छे डॉक्टर बच्चन प्रसाद सिंह जी से।
2: बागों का जीर्णोद्धार बड़ा ही सामयिक विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 30-35% आम का बगीचा या तो अनुत्पादक हो गया है या उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इन अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार करना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि नया बाग लगाने में खर्च और समय दोनों ही अधिक लगता है। जीर्णोद्धार का मतलब है वांछित प्रक्रियाओं को अपनाकर पौधों में फिर से युवा अवस्था के गुणों को सृजित करना, ताकि जो पौधे अनुत्पादक या किसी कारणवश कम फल दे रहे हैं वैज्ञानिक तरीकों द्वारा फल देने योग्य बना देना। ऐसी अवस्था साधारणतः 45 से 50 वर्षों के बाद ही आता है। इस काम को करने के लिए कम से कम 2 वर्षों तक पौधों का सघन देखभाल करना पड़ता है तथा 3रे साल से फलन में आ जाता है। इसके लिए हमारे बागवान किसान भाइयों को इस प्रकार प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, जैसे सर्वप्रथम अनुत्पादक या कम फल देने वाले बागों का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। दूसरा, छत्रक अर्थात कैनोपी विकसित करने के लिए बाहरी शाखाओं का चुनाव कर चिन्हित कर लेना चाहिए एवं उचित ऊंचाई पर चौक या सफ़ेद पेंट से चिन्हित कर लेना चाहिए। पूर्णतः हटाने वाले शाखाओं में पौधों के बीच अस्थित रोगग्रस्त एवं सूखी हुई शाखाओं का चुनाव कर इन्हें निकलने के स्थान से हटा देना चाहिए। मुख्य तना से शाखाओं की कटनी जहां से शाखाएं निकली हो उससे नीचे 3 इंच छोड़कर करना चाहिए। छत्रक को यथासंभव गोल बनाना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें पौधों पर चारों तरफ से फैले एवं प्रकाश विश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह हो। कटाई का कार्य तेज धार वाली आरी अथवा प्रूनिंग सॉ की सहायता से नवंबर दिसंबर में करना चाहिए। कटाई के लिए पहला कटाव चिन्हित स्थान पर नीचे के तरफ से 5 से 10 सेंटीमीटर तना की मोटाई के अनुसार सीधा काटना चाहिए, फिर उसी निशान पर पूरी शाखाओं को काटना चाहिए ताकि शाखा फटे नहीं। कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% फफूंदनाशक को अंडी अथवा करंज के तेल में मलहम बनाकर अथवा गाय का ताज़ा गोबर और चिकनी मिट्टी का लेप बनाकर कटे हुए भाग पर लगाना चाहिए ताकि कटा हुआ भाग आगे सूखे नहीं। कटाई कार्य संपन्न करने के तुरंत बाद सभी डालियों को उद्यान से हटा देना चाहिए, जिससे कि पौधा में खाद एवं जल प्रबंध करने हेतु थाला बनाने में सुविधा हो। फरवरी मार्च महीने में पौधे के मुख्य तने पर चूना में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर पुताई कर देना चाहिए, ताकि इससे गोंद निकलने वाली बीमारी जैसे गमोसिस एवं फटने की समस्या नहीं रहे। खाद प्रबंधन में छटाई किए गए प्रत्येक पौधे में 2.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल्स पर फास्फेट तथा 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा देनी चाहिए। फरवरी के अंत में यूरिया की आधी मात्रा तथा सिंगल्स पर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा बेसिन में डालकर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यूरिया की शेष आधी मात्रा जून के अंत में देनी चाहिए। बेसिन विधि से खाद देने के लिए तने से 1.5 मीटर की दूरी पर पौधा के चारों तरफ गोलाई में 60 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बना देना चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद

0: 100 किलोग्राम प्रति पौधा के दर से डालना चाहिए। सिंचाई का कार्य अप्रैल से प्रारंभ कर वर्षा के प्रारंभ होने तक 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। कटाई की गई शाखाओं पर अप्रैल से बहुत अधिक संख्याएं में नए परो निकलते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक डाली में स्वस्थ परों को रखकर शेष सभी को हटा देना चाहिए। यह कार्य मई जून के महीने में करना चाहिए। इस तरह दूसरे वर्ष भी इन्हीं पोषक तत्वों का उपरिवेशन करना चाहिए तथा फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जीर्णोद्धार किए गए पौधे पर यदि तना छेदक कीट का प्रभाव दिखाई दे तो कीट द्वारा बनाए गए छेद से साइकिल के स्कोप की सहायता से महीन लकड़ी का चूर निकालकर साफ कर देना चाहिए एवं रुई को किसी कीटनाशी अथवा पेट्रोल में भिंगाकर छिद्र में ठूस देना चाहिए। ऊपर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना चाहिए। अच्छा छत्र विकसित करने के लिए समय समय पर रोगग्रस्त शाखाओं का को काटते रहना चाहिए एवं छत्रक को हमेशा गोलाकार बनाना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें पौधों के चारों ओर फैले और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह हो। बरसात में पत्ती काटने वाले कीड़े नए परों को खाकर गिरा देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नुभान कीटनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते रहना चाहिए। इन कटे हुए पौधों को दूसरी किस्मों में भी बदला जा सकता है। इसके लिए छांटे हुए पौधे में नए प्रो पर जून जुलाई के दौरान मनचाहा किस्म के भिनियर कलम या सॉफ्टवुड कलम द्वारा वांछित किस्में तैयार की जा सकती है। कटाई उपरांत बाग में खुला स्थान बढ़ जाता है। इन खुले स्थानों पर तरह तरह के अंतर फसल जैसे सब्जियां, मूंग, उड़द या अन्य दलहनी फसलें तथा रबी में आलू, मटर, सरसों इत्यादि का खेती कर किसान भाई अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं।
1: हाँ, एकरा वास्ते जे छै बहुत अच्छा बाग के जीर्णोद्धार के संबंध में ही बतल के
2: जी।
1: एकरा वास्ते डॉक्टर बच्चन प्रसाद सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। आवस जे छै कुछ संदेश सुनला के बाद श्रोता लोग का एक शिव भजन सुनवेबे।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: हाँ पूरा भाई तभी बहुत अच्छा मसनी
1: शिव
0: शिव
1: भजन
0: भजन सुन लिए
1: जी
0: आरो अब समय हो गलो छे खेती बाड़ी के चर्चा करे के।
1: जी जी
0: तो देखो कृषि वास्ते जे छे मौसम संबंधी जानकारी आ समसामयिक सुझाव बहुत जरूरी छे।
1: जी जी
0: तो पहिने श्रोता लोग के मौसम संबंधी जानकारी दै छे ओकरो बाद समसामयिक सुझाव
1: जी
0: बतबे। तो देखो आगामी 5 जुलाई के तक दक्षिण बिहार के जिला में 1 से 2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के आरो हल्का वर्षा के संभावना छे।
1: जी
0: भागलपुर बांका रोहतास कैमूर जिला में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा होने का अनुमान छे। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे।
1: जी
0: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे।
1: जी जी
0: आवक जे किसान भाई ने धान के फसल उपजेते ओकरा वास्ते कुछ जानकारी छे कि वर्तमान समय में मानसून के कमजोर स्थिति का देखता हुआ
1: अच्छा
0: किसान का सलाह दिलो गलो छे जौन किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध छे वह मध्यम अवधि वाला धान के किस्म के बिचला गिराए दे आरु बीज स्थली में नमी बरकरार रखे वास्ते आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करना चाहिए। धान के किस्म सबोर मोती धान सबोर सोना के सीधा बुआई भी करल पारे छो। मोटे अनाज के खेती में वास्ता उचास भूमि के चयन करना चाहिए। मडुआ के राजेंद्र मडुआ RU8 RU3 आर राजेंद्र कौनी एक किस्म के बुआई करना चाहिए। अरहर वास्ता सलाद लोग लो छे कि उचास जमीन में अरहर के बुआई वास्ता खेत तैयार करना चाहिए। बाहर पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 राजेंद्र अरहर 2 किस्म के बुआई 60 सेंटीमीटर लंबाई देना चाहिए और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई रखना चाहिए। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन 45 किलोग्राम स्फूर 20 किलोग्राम पोटास 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग करना चाहिए। अरहर के वास्ता अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। मक्का के किसान वास्ता सलाह दिलो गलो छे
1: जी
0: खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रला भी करना चाहिए। खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़लो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करना चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास के व्यवहार करना चाहिए। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसा सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 छे।
1: जी
0: मूंग के तैयार फली के तुड़ाई कर लेना चाहिए आ हरा खाद वास्ते ओकरो पौधे आ के मिट्टी पलट वास्ते जमीन में गाड़ी देना चाहिए। सब्जी में जना भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ लौकी के फसल में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए।
1: जी
0: पत्ती खाए वाला सुंडी आरु फल छेदक कीट के नियमित निगरानी करना चाहिए। प्रकोप होला पर डाइमेथोइड 30 EC के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव आसमान साफ रला भी करना चाहिए। खरीफ प्याज के खेती वास्ते नर्सरी के तैयारी आसमान साफ रला करना चाहिए। स्वस्थ पौधा के वास्ते नर्सरी में गोबर खाद के अवश्य प्रयोग करना चाहिए। खरीफ ब्याज के वास्ते N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर किस्म अनुशंसित छे। प्याज के बीज के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करना चाहिए। बीज निगरानी के पूर्व बीजोपचार कर लेना चाहिए। बीज के दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। बागवानी में जना लीची के फल के तुड़ाई के बाद बगीचा में अवश्य छटाई कर लेना चाहिए जेकरा से पेड़ के भीतर पर्याप्त धूप और हवा के संचार हो सके छे। साथ ही बगीचा में गिरलो हुआ पत्ता सूखा शाखा और अन्य पौध अवशेष का एकत्र करी का हटा देना चाहिए। एकरा से कीट और रोग के प्रकोप में कमी आवे छे और पेड़ के स्वस्थ वृद्धि और विकास का बढ़ावा मिले छे। दुधारू पशुका गर्मी करीके प्रभावसँ बचाय वास्ते छायादार आरो हवादार स्थान पर रखना चाहिए। ओकरा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ आरो ताजा पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। गलाघोटू आरो लंगड़ी रोग से बचाव के वास्ते टीकाकरण कराए के आवश्यकता है। सभी दुधारू पशु में टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
1: जी
0: तो होइत छले मौसम संबंधी सूचना आ समसामयिक सुझाव। आब श्रोता लोग के एक बढ़िया सा कृषि गीत सुनवाई छे कलाकार छे विनय कुमार शुक्ला
1: जी आई।

0: कितना बढ़िया, मतलब कृषि गीत की हमरो बलमुआ किसान, और देख कितना अच्छा बात है ना कि वो गीत गाकर बता रही हैं कि हमारा जो जो पति है, जो हस्बैंड है, वो किसान है। जी यही भाव होता है।
1: ये भावना होइ छे आरु तो बहुत तरह के कृषि गीत होइ छे, खास करी तो गांव घरों में देखो।
0: तो मतलब एकदम रोपनी के समय से लेके हर हर समय गीते गीत चलते चलते रहता है। और होता क्या है कि विदो भाई, जब हम देखते हैं कि हम वार्ता की बात करते हैं, तो हर तरह की खेती की जाती है, बहुत सारा खेती होता है, और वैज्ञानिक तरह से आजकल खेती की जा रही है। और जब वैज्ञानिक तरह से खेती की जाती है, तो हमें बहुत सोच समझकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस खेती का चुनाव करें, किस तरह की वैज्ञानिक खेती को ध्यान में आगे रखें। तो हम एक अपने श्रोताओं को पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाते हैं नील हरित शैवाल का उत्पादन तकनीक और उनकी उपयोगिता के बारे में।
2: शैवाल उत्पादन तकनीक एवं उपयोगिता। नील हरित शैवाल कल्चर। नील हरित शैवाल एक विशेष गुणों वाला जीवाणु है जो धान के पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। शैवाल के वृद्धि धान के खेती में या जल वाली भूमि में अधिक होती है, इसलिए शैवाल कल्चर का उपयोग केवल धान फसल में किया जाता है। धान रोपनी के 10 से 15 दिनों के बाद 10 किलोग्राम कल्चर को सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर धान फसल में पानी के ऊपर समान रूप से छींट दिया जाता है। कल्चर की प्रयोग से धान की फसल को 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। नाइट्रोजन के अलावे पौधों को संवर्धन हेतु अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होती है। कल्चर का प्रयोग करने पर नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा की कटौती की जा सकती है। इस कल्चर की प्रयोग से मिट्टी के जैविक पदार्थों में बढ़ोतरी होने से खेत की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। टिकाऊ आधारित धान खेती प्रणाली की स्थापना हमारे राष्ट्रीय सरोकारों में एक है। धान की इकाई क्षेत्र में उच्च उत्पादकता हमारी बढ़ती आबादी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये प्रधान खाद्य फसल माना जाता है। किसानों की बेहतर लाभप्रदता हमारी एवं उपभोक्ता का कृषि उपज उचित मूल्य पर प्रदान करना हमारे लिए चिंता की विषय है, एवं ये केवल उत्पादन की इकाई लागत को कम करने के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए धान की खेती में उद्देश्य निम्नलिखित है: 1 उच्च उत्पादकता, 2 उच्च लाभप्रदता या बेहतर रिटर्न, 3 उत्पादन की निम्न इकाई लागत। विभिन्न उर्वरकों के क्रमिक मूल्य वृद्धि के प्रकाश में हम उन रासायनिक आदानों के लिए एक उपयुक्त विकल्प के बारे में सोचना है, तो प्राकृतिक संसाधनों की रिसाइकलिंग की आवश्यकता ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ मृदा सूक्ष्म जीवी जो विभिन्न पोषक तत्वों को भू रासायनिक परिवर्तन में एक विशाल भूमिका निभाते हैं, वे एक अच्छी तरह से प्राकृतिक उपकरण या स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक जांच से संकेत मिलते हैं कि धान में कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों का संयुक्त उपयोग से उच्च उत्पादकता हासिल किया जा सकती है। खेती खाद, हरी पत्ती खाद, हरी खाद और जैविक उर्वरक आदि कार्बनिक आदानों के बेहतरीन स्रोत है। विभिन्न जैविक उर्वरक में नील हरित शैवाल हमारे धान के लिए एक अच्छा नाइट्रोजन कैटरर है। नाइट्रोजन के अंधाधुंध तरीके से उपयोग के कारण नहीं प्रति इकाई क्षेत्र बल्कि मृदा स्वास्थ्य भी खतरे की कगार पर आ गई है। इस समस्या का सामने आसानी से नील हरित शैवाल के अनुप्रयोग द्वारा कर सकते हैं। धान के खेत में नील हरित शैवाल न केवल वायुमंडल

0: या नाइट्रोजन की फिक्सिंग बढ़ाते हैं, बल्कि उच्चतर मृदा नमी प्रतिधारण क्षमता, मिट्टी कार्बनिक पदार्थों का उपलब्धता, फास्फोरस एवं अलग अलग फाइटोहार्मोन्स का बढ़ावा देते हैं, जो कि एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य पैदा करता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग के उपरांत धान की खेती में जो नाइट्रोजन बचती है वह काफी हद तक रबी मौसम में गेहूं और अन्य फसल को मदद पहुंचाती है। अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन का 30% नील हरित शैवाल से पूरा किया जा सकता है। औसतन ये प्रति हेक्टेयर भूमि में 25 से 30% नाइट्रोजन का बढ़त मिलता है, साथ ही साथ 10 से 15% उपज में बढ़ोतरी होती है। नील हरित शैवाल को मिट्टी कंडीशनर भी कहा जाता है एवं उनकी मोटी चटाई मिट्टी में एक परिवेश तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। नील हरित शैवाल कल्चर बनाने के विधि। ग्रामीण मिट्टी आधारित नील हरित शैवाल उत्पादन किसानों के लिए बहुत ही आसान उद्यम है। प्रक्रिया के रूप में निम्नानुसार है। एक जस्ती लोहा ट्रे या सीमेंट का बना हुआ गड्ढा या पॉलीथीन बिछा हुआ गड्ढा आकार 6 फीट बाई 3 फीट बाई 9 इंच बनाया जाए। 10 किलो अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी को ट्रे में रखा जाए। 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 25 ग्राम फ्यूराडन, 2 ग्राम सोडियम मलिब्डेट अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिश्रित किया जाए। पानी का उपयोग करके इनको अच्छी तरह से मिश्रित किया जाए। जब मिट्टी मिश्रण नीचे बैठ जाए, 150 से 200 ग्राम स्टटर कल्चर पानी के सतह पर समान रूप में सुबह व शाम को छीट दिया जाए। 2 से 3 दिनों के भीतर नीली हरी शैवाल सतह पर फैलना शुरू हो जाएगा। 7 से 10 दिनों में शैवाल की चटाई का गठन शुरू हो जाएगा। 10 से 15 दिनों में शैवाल की मोटी चटाई कटने के लिए तैयार हो जाएगा। पानी का गड्ढा से निकालकर चटाई को तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। जब चटाई सूख जाएगा, इसे संग्रहित कर आगे के उपयोग के लिए एकत्रित किया जाए। कल्चर अच्छी तरह से 10 से 15 दिनों धान के रोपाई के बाद छिड़काव किया जाए। आवंटन की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सभी रासायनिक उर्वरक के साथ इसका प्रयोग ना करें। उपयोग विधि। सर्वप्रथम खेत में पानी का बहाव को रोकने के लिए मेड़ की मरम्मत करें, ताकि फसल लगी खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी का ठहराव या जमाव बना रहे। रोपनी के 10 से 15 दिनों के बाद 10 किलोग्राम कल्चर बालू या सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर धान फसल की खेत में पानी के ऊपर पर समान रूप से छींट दे। धान में नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा 30 से 40% जो शैवाल कल्चर से प्राप्त होती है, उसको कटौती कर नाइट्रोजन की शेष मात्रा को उपयोग अवश्य करें। शैवाल कल्चर के साथ अन्य खाद्य का उपयोग। रोपनी के समय कम से कम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर तथा फास्फेट और पोटास की अनुशंसित मात्रा अवश्य प्रयोग करें। रोपनी के 10 से 15 दिनों के बाद कल्चर की उचित मात्रा 10 किलो प्रति हेक्टर के भुड़काव खेत में समान रूप से करें। धान में कल्ले निकलने के समय प्रथम उपवेशन में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर यूरिया के रूप से अवश्य करें। धान बाली निकलने के समय नाइट्रोजन की शेष भाग 10 से।
1: हाँ, अभी बहुत सुंदर वार्ता सुन लिए
2: जी।
1: नील हरित शैवाल उत्पादन तकनीक और उपयोगिता आवर जे छे फिर कार्यक्रम में आगू बढ़े छे। आ एक कृषि गीत ही श्रोताक सुनाना उपयुक्त होते
2: जी जी जी।

0: हाँ तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कि आपसे अब विदा लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई विषयों पर चर्चा करके। सुनाएंगे आपको बहुत सारे गीत भजन, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सभी को पूर्व का नमस्कार।
1: सबका विदों के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: साथ रहते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं जिनमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, ये ज्यादा बच्चों में आसानी से फैल जाती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक हाइजीन है उसके बारे में ट्रेन करें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में अगर बच्चे भीग जा रहे हैं तो उनके कपड़े
1: ग्रामीण विकास विभाग से झारखंड राज्य में बीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे।
2: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: बरसात के दौरान
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
2: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा किए। लोक भवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में राज्यपाल ने, जबकि आवासीय कार्यकाल कार्यालय में मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रपत्र भरे। दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से समय पर मतदाता सूची का सत्यापन कराने की अपील की। राज्य में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी FAQ का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रवासियों और छात्रों के लिए नियम स्पष्ट किए हैं। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र अब वोटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपना गणना प्रपत्र भर सकेंगे।
3: पशु के खेत के पास में गड्ढा चाहे तालाब के पानी पिलावे से परहेज करते हैं।
2: जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले की लीपापोती करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उन्होंने घटना के वक्त मौजूद पुलिस कर्मियों व असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आजसू महिला मोर्चा ने आगामी 4 जुलाई को आयोजित होने वाले अखिल झारखंड महिला अधिवेशन को लेकर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अधिवेशन खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदेश महतो होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 3 अलग अलग मामलों पर अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने हजारीबाग ओपन जेल मामले में राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वही बोकारो की लापता नाबालिग मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए CBI को पक्षकार बनाया गया है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने गढ़वा उपायुक्त को वर्ष 1992 में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द देने का कड़ा निर्देश दिया है।
5: आपने मुझे बुलाया।
2: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
3: राज्य की जनता वन विभाग
6: वृक्षारोपण।
2: रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह आज से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभुक बन गए हैं। उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
7: हम जहां एक तरफ बिजली जनरेट करेंगे, दूसरी ओर हम कितने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कितना फायदा देंगे। मैं झारखंड की जनता से, विशेषकर जितने सरकारी राज्य सरकार की कार्यालय, केंद्र सरकार की कार्यालय, जितने और आम लोग, वो लोग हॉस्पिटल है, वो सब सोलर पैनल लगवाएं ताकि बिजली की खपत कम हो, पर्यावरण को संरक्षण भी हो और डीजल पेट्रोल और कोयले की बचत।
2: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
8: जमा कर दें
9: डॉक्टर जाने में 1 घंटे का समय और जिला मुख्यालय तक जाना 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सड़क खराब होने की वजह से स्थिति होती है। तो मुझे पूरा भरोसा है इस संसाधन को आप लोगों के काम को, आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, उसका आप लोग बेहतर इस्तेमाल करेंगे।
2: 50 रुपया दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान से भेजा गया है। पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी है। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आज पहली बार दागी अपराधियों की सामूहिक परेड कराई। पुलिस लाइन में आयोजित इस परेड में सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई और उनके वर्तमान रहन सहन की समीक्षा की गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को सुधरने की आखिरी चेतावनी दी। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने इसका उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालक वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस आयोजन में जिले के सभी 12 प्रखंडों की विजेता टीमें हिस्सा ले रही है, जिसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए खेल प्रतिभाओं का चयन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति। एसआईआर के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार के 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने पीएम सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ये सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार विनय कुमार शुक्ल के गाये लोकगीत। आरंभ में सुनिए एक लोक भजन।

0: कौनी
1: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक देवी गीत।

0: श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक लोक भजन।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: आपना बिपतिया तोहरो सुरतिया देखी फाट मोर छतिया तोहरो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में गाय कलाकार विनय कुमार शुक्ल के गाय लोकगीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रिपल टी से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी के विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी, साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी थाने और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी खोले जाएंगे। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में ओपी बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन के लिए ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
1: इसमें हम लोगों ने ट्रिपल टी की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण भी किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हो गया है। पूरे रूट की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह दूरी 15 मिनट में तय होगी। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मेट्रो में यात्रा भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान आज तिरुपति में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूती मिलने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर सुशासन, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सस्ती कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 50% या 17,50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 50 कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। यह योजना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी वाले 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में लागू होगी। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कोल्ड स्टोरेज संचालक बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में से अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले कई श्रमिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने टीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक सौराठ सभा की आज से शुरुआत हुई। मिथिला की इस प्राचीन वैवाहिक परंपरा में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर और वधु के संबंध तय करने के लिए पहुंचते हैं। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्था के अनुरूप वंशावली और गोत्र का मिलान कर विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के पौथु थाना क्षेत्र अंतर्गत भताई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाराही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी आईटीआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 60,000 रूपये लूट लिए। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन के निर्देश पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 प्रखंडों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 3,000 लीटर पेट्रोल के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई है। पेट्रोल के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, TTT से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISBT से मलाही पखड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: दरभंगा जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से मौसम में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने के बाद भी लगभग एक सप्ताह तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कृषि कार्यों पर इसका असर पड़ा है। खासकर धान की रोपनी का कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है, जिससे किसानों को समय पर बुआई को लेकर चिंता बनी हुई है। इधर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर केवल धान की खेती पर ही नहीं बल्कि बागवानी और फल उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले की सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम हयाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में हुआ। इसका शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र

0: और वन और पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में पंचायतों के समग्र विकास, जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सशक्त विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्यों को जमीन पर उतारना है। उन्होंने बताया कि पंचायत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें 9 प्रमुख विषयों के तहत लागू किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल विकास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं शामिल है। केवटी प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता के मामले में दरभंगा प्रमंडल के लोक प्राधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त ने बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी है। इससे पहले लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था और पद अच्युत की अनुशंसा करने को कहा था। इधर पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पंडाफोड़ किया है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने असली अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 12-12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। मामले में लहरियासराय और नगर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने 48 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उसकी आवाजाही को आसान करना है। वितरण के बाद सभी लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही UDID कार्ड के महत्व और उसके मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। जिले की रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और उपलब्ध संसाधनों तथा आधारभूत संरचना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मिल के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बग्गा और त्रिभुवन गांव में मुहर्रम जुलूस के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बग्गा गांव के 14, त्रिभुवन के 12 और खिरमा पथरा गांव के 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोताओं अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनहरी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका सीमा बैनर्जी की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए नेपाली का लिखा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका सीमा बैनर्जी की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म दबंग का ये गीत। फैज अनवर ने इसके बोल लिखे हैं, साजिद वाजिद का है संगीत, आवाज है राहत फतेह अली खान और साथियों की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म देवदास का ये गीत। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा है नुसरत बद्र ने और इसे संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। इस गीत को गाया है के डोमिनिक और साथियों ने। इसे संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने और इसके बोल लिखे हैं महबूब ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में सुनिए फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। संगीत है अदनान सामी का और बोल लिखे हैं समीर ने।

0: बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बक्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म ना तुम जानो ना हम का ये गीत। इस गीत को गाया है कमाल खान और स्नेहा पंत ने। राजेश रोशन का है संगीत और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने

0: और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटे

0: क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबैन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उंसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। नए निज़ाम के तहत बैन अल-अक़वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया

0: फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, आवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मजमूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ एआई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलग सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Cubay. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि यह योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा।
2: मीडिया वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आपने अभी सुना कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को गाया था सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद ने इसे संगीतबद्ध किया था और इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म द बर्निंग ट्रेन से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना द बर्निंग ट्रेन का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे थे। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म जंजीर से, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyarkut

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यर कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यर कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा

0: sitting any tournament, any team, and their form is yet to come. And I mean, especially if you talk about Wolvat, she's yet to give her best. I guess I mean they can do anything, and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this England team, English team, it looks very balanced.
1: क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टी एस राधाकृष्णन ने दिया है
2: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंट्स फोर लाइट वोकल सॉन्ग्स द लिरिक्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय श्री रफीक अहमद द रेनाउंड मलयालम फिल्म लिरिसिस्ट एंड पोएट The music has been composed by Sri T. S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
1: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye, sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet सुनते हैं
2: द रिलेशनशिप बिटवीन श्री कृष्णा एंड राधा इज नॉट मियरली अ वर्ल्डली रोमांस इट सिंबलाइजेस द डिवाइन यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम बीइंग लेट अस बिगिन बाय लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द लव ऑफ राधा एंड माधवा

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती हैं, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
4: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both prime ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। हम कल प्रातः 5:48 पर कल के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।